मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 32 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

मीडियम वेव 401.1 मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था

0: सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरो मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज कद्दू वर्गीय सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। आइए सुनते हैं।
2: शुभ प्रभात। कद्दू वर्गीय सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं इस मौसम में। कारण यह है कि यही एक मौसम है जिसमें हम बहुतायत से इसकी खेती करते हैं। करने को तो इसको रबी में भी करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, लेकिन जायद की बात ही कुछ और होती है। कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं उनकी देखभाल में यह कहा जाता है कि हमें कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि इस समय कीट पतंगे या जो भी रोग के कारक हैं वह खुले में रहते हैं, फसलें उतनी रहती रहीं, उनके लिए आश्रय स्थल उतना रहता नहीं, इसलिए इनके सुरक्षा कार्य को संपादित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखते तो रबी मौसम में है कि जो चोड़िल फफूदी होती है वह ज्यादा लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो इसमें हम खीरा, परवल, खरबूजा और करेला विशेष रूप से उगाते हैं उस पर ये पाई जाती है मृद्रोमिल आसिता। रोग वर्षा ऋतु के उपरांत जब तापमान 20 से 22 सेंटीग्रेड होता है तब विकराल रूप धारण करता है, इसलिए पहले से ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो शिराओं द्वारा सीमित होते हैं, पत्ती के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं, अधिक नमी जो है

0: उसकी उपस्थिति में इन भागों के नीचे पत्ती की निचली सतह पर मृदु रोमिल कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसके प्रबंधन के लिए भी वही सामान्य सी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि बोने के लिए रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। बीजों का एग्रोसान नामक कवकनाशी जो है उसका 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने पर भी फायदा होता है। मैंकोजेब 0.25% का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी नियंत्रण के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में देखा गया है। पूरी तरह रोगग्रस्त लताओं को निकालकर जला देना चाहिए, क्योंकि वहां छोड़ेंगे तो फिर ये दूसरी जगह फैलाएंगे। रोग रहित बीज उत्पादन करने के लिए गर्मी की फसल से बीज उत्पादन करना बेहतर होता है, इसलिए इसी मौसम को आप चुने जिससे कि बीज आपका स्वस्थ मिले और अच्छा रहे। एक मलानी रोग होता है और साथ ही साथ जड़ सड़न जिसे हम कह लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है। यह आमतौर पर खीरा और खरबूजा में पाया जाता है। रोग ग्रसित एवं पूरा पौधा मुरझा जाता है, पौधे की जड़ भी सड़ जाती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और सूख ही जाता है। इसके प्रबंधन के लिए भी आपको इसी समय बेहतर रूप से सोचने की जरूरत है। जैसा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया में अपनाया जाता है, रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर जला देना, बीज को कार्बंडेजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर उपचारित करके बोए हैं तो फिर कोई चिंता नहीं, आप निश्चिंत रहें और इस समय आपके लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं होगी, फसल बचेगी। धान एवं मक्का के साथ अगर हम इसे देखें तो 4 से 5 साल तक का फसल चक्र अपनाया जाता है जब, तो स्थिति बेहतर हो जाती है। खेत की गर्मी में जुताई करें और हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना अगली आने वाली फसल के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। वैसे हम देखते हैं ये कि फसल सुरक्षा, जो कद्दू वर्गीय फसलों की बात हम करते हैं, तो उसमें फल गलन रोग भी बहुत ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह रोग प्रत्येक स्थान पर देखा गया है, प्रत्येक खेत में पाया जाता है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्य रूप से घिया तोरी, चिचिंडा, परवल, लौकी के साथ साथ करेला के फलों पर कवक की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से फल सड़ने लगते हैं। धरातल पर पड़े फलों का छिलका नरम गहरे हरे रंग का हो जाता है और जब नम वायुमंडल होती है तो उस स्थिति में सड़े हुए भाग पर रुई के समान घने कवक जाल विकसित हो जाते हैं, एक सामान्य सी इसकी पहचान है। भंडारण और परिवहन के समय भी फलों में यह रोग फैलता है और फिर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कारण यह होता है कि पूरी फसल तैयार रहती है, केवल मार्केट में ले जाकर के बेचने की स्थिति जो होती है उस बीच यह नुकसान पहुंचा देता है, तो पूरे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसके लिए जरूरी यह है कि खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें, ज्यादा पानी न लगाएं। खेत की गर्मी में जुताई अगर की गई रही है, अगर ऐसी स्थिति रही है, तो फिर मान करके चलें कि इससे आपको काफी हद तक सुरक्षा मिलेगी। और ये सुरक्षा अगर इस साल नहीं मिल पा रही है तो अगले साल के लिए ध्यान रखें कि खेत की गहरी खोप गर्मी की जुताई जिस खेत में लगाना है उसे अभी से कर दें। हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना भी बेहतर सी स्थिति उत्पन्न करता है। फलों को भूमि के स्पर्श से बचाने का प्रयत्न तो बिल्कुल समसामयिक बात है, उसको आपको अभी करना ही करना है। भंडारण एवं परिवहन के समय फलों में चोट लगने से नुकसान होता है, हवादार एवं खुली जगह पर रखें, बेहतर होगा क्रेट्स का प्रयोग करें, वह सुरक्षा प्रदान करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, एंथ्रेक्नोज हो या फिर इसी तरीके के कुछ और होते हैं, लेकिन जो हमारी रोकथाम की प्रक्रिया है कद्दू वर्गीय फसलों में, बस इतने तक का ही रखेंगे ध्यान, तो कोई भी फसल जो कद्दू वर्गीय है इस समय की हमारी जायद की, वह विशेष रूप से सुरक्षित रहेगी।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा के लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूँ और सारी मानवता से विलग होकर मैं समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीत राग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है। जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को छोड़ देता है, जो जितेंद्रिय है, वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा और व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को यह सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावनाएं उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज को सुनना और समझना।

अभी आप सुन रही थी गांधी चर्चा। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और अब प्रस्तुत है आस्था, प्रार्थना, आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

जब प्रभु श्री कृष्ण जमुना किनारे अपनी मुरली की मनमोहक तान छेड़ते हैं, तो क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, ये पृथ्वी और गगन सब झूम उठते हैं। सभी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और हम सभी हरि दर्शन के आस लगाए रहते हैं।

ऐ प्राणी, तू ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। तुझे अन्य प्राणियों की अपेक्षा न सिर्फ बुद्धि वरन सब कुछ अधिक मिला है। इसलिए इस संसार में आने के बाद से ही तुझे मानवता और श्रेष्ठता की पल पल परीक्षा देनी पड़ती है। तू कर्म करता जा, फल की इच्छा न कर। फल देने वाला तो वो ईश्वर है जो हर पल तेरे साथ खड़ा है।

हुसैन तुमको इबादत सलाम कहती है, तुम्हारे सजदों को रहमत सलाम कहती है, क्योंकि दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का, इंसानियत के खातिर कुर्बान है हर दीवाना हुसैन का।

प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला बहुत ही मनमोहक है। जब भी प्रभु जमुना के किनारे अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हैं, अपनी छोटी छोटी गैया के बीच मुरली की तान छेड़ते हैं, तो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी झूम उठते हैं। उनका ये मनमोहक रूप देख सभी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रही तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामना अवतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे सुरेश वाडिकर के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वास्थ्य का खजाना चकोतरा के बारे में। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है एक ऐसा फल जिसे आप बाजार में देखकर शायद कई बार नजरअंदाज कर जाते होंगे, लेकिन अगर इसके गुण जान लें तो इसे अपनी थाली में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं चकोतरा की। चकोतरा दिखने में मोटा और भारी होता है, लेकिन अंदर से रसीला, ताजगी से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक गुणों का भंडार है। चकोतरा का स्वाद अनोखा होता है, खट्टा मीठा और कभी कभी हल्की कड़वाहट लिए हुए, लेकिन यही स्वाद इसे खास बनाता है। हमारे देश में ये खास तौर पर उत्तर भारत, उत्तर पूर्व और दक्षिण के कई हिस्सों में उगाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में तो इसका उपयोग परंपरागत औषधि के रूप में वर्षों से होता चला आ रहा है। जब खाना भारी पड़ जाए, पेट फूलने लगे या सर्दी जुकाम की शुरुआत हो तो चकोतरा काटकर उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डालकर खा लेना एक तरह की घरेलू दवा मानी जाती है। चकोतरा में सबसे प्रमुख पोषक तत्व है विटामिन सी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। जब शरीर बार बार थकने लगे, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए या घाव भरने में वक्त लगे तो ये संकेत होता है कि शरीर को विटामिन सी की जरूरत है। ऐसे में चकोतरा एक आदर्श फल है जो न केवल पोषण देता है बल्कि शरीर की अंदरूनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, कोशिकाओं को क्षय से बचाते हैं और त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे दमकता और युवा बनाए रखते हैं। यही वजह है कि चकोतरा उन फलों में गिना जाता है जो डिटॉक्स यानी शरीर की सफाई करने की प्रक्रिया में बेहद कारगर होते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से शरीर को ताजगी तो मिलती ही है, साथ ही पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पाचन की। तो चकोतरा में रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पेट की सफाई में सहायक होता है। जो लोग गैस, अपच या बार बार कब्ज की शिकायत से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये फल एक प्राकृतिक उपाय है। इसका सेवन भोजन से पहले करने पर भूख बढ़ती है और बाद में करने पर भोजन का पाचन बेहतर होता है। खासतौर पर भारी और तेल युक्त भोजन के बाद अगर एक टुकड़ा चकोतरा खा लिया जाए तो वो पेट को हल्का बनाए रखने में

0: मदद करता है। चकोतरा का रस हृदय के लिए भी लाभकारी माना गया है। इसमें पोटेशियम और फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति इसे हृदय की धमनियों के लिए लाभदायक बनाती है। ये रक्तचाप को संतुलित रखने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और रक्त प्रवाह को सुधारने में मदद करता है। कई शोधों में ये सामने आया है कि नियमित रूप से चकोतरा जैसे फल खाने से हृदय रोगों की संभावना कम हो सकती है। इसका एक और बड़ा लाभ है वजन को नियंत्रित करना। चकोतरा में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन फाइबर अधिक होता है, जिससे ये पेट को भरता है और बार बार भूख लगने की प्रवृत्ति को कम करता है। जिन लोगों को वजन घटाने की प्रक्रिया में बार बार भूख सताती है, उनके लिए ये एक अच्छा नाश्ता या सलाद का हिस्सा बन सकता है। इससे शरीर को पोषण भी मिलता है और वजन नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। चकोतरा में एक विशेष ताजगी होती है जो गर्मियों में शरीर की गर्मी को शांत करने और मानसून में उमस से राहत देने का काम करती है। यही कारण है कि कई लोग इसका शरबत बनाकर गर्मी के दिनों में पीते हैं या फिर इसे सलाद में शामिल करते हैं। इसके छिलके का भी अपना महत्व है। पारंपरिक चिकित्सा में चकोतरा के छिलके का पेस्ट त्वचा पर लगाने से कील, मुहासों और एलर्जी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। अब बात करें इसके मानसिक प्रभाव की। इसका सुगंधित स्वाद और हल्का तीखापन मानसिक थकावट को दूर करता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जब काम के दबाव में मन भारी हो जाए, तब चकोतरा का एक टुकड़ा खाने से मूड में एक ताजगी सी महसूस होती है। यही वजह है कि इसे कभी कभी मूड बूस्टर फ्रूट भी कहा जाता है। श्रोताओं, चकोतरा न केवल एक फल है, बल्कि ये एक ऐसा प्राकृतिक उपहार है जो स्वाद, सौंदर्य और स्वास्थ्य तीनों को एक साथ पोषण देता है। ये सादा होते हुए भी चमत्कारी है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे छीलिए, काटिए, स्वादानुसार मसाला डालिए और फिर धीरे धीरे उसका स्वाद और गुण दोनों महसूस कीजिए। श्रोताओं, चकोतरा की खट्टी मीठी मिठास को अपने जीवन में शामिल कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य का खजाना चकोतरा, इसके बारे में अभी हमें स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बता रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे वाराणसी और गाजीपुर जिले की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज आप सुनेंगे मुशायरा। आज के शायर होंगे जनाब अतीक खान, जनाब सूफी गोंडवी और जनाब आमिर मुख्तार। समनिदेशिती होगी शमशुल आरफीन की। विश्व रेड क्रॉस दिवस, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। सुबह 7:31 से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल प्रसाद मिश्र का तबला वादन। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियां। इस विषय पर सुरेश चंद्र दीक्षित की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 से आप आनंद लेंगे डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के गाए लोकगीतों का। और यही लोकगीत आप सुन सकते हैं लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर भी। युवा तरंग, युवा साथियों का ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज के बाद क्रम के अंतर्गत आज

चर्चा होगी विश्व रेड क्रॉस दिवस और यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पर। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का। लोक आयतन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा, साथ ही साथ डिजिटल पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत, इस विषय पर राधेश्याम दीक्षित की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31 का, जिसमें आज आप सुनेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला से डीकोडिंग सिंबोलिज्म के बारे में। महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार इस विषय पर। साथ ही आकाशवाणी एट 90 कुछ यादें कुछ बातें, इस विषय पर महिलाएं सुनेंगी श्रीमती शारदा यादव और नीना श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगी ममता उपाध्याय। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि वानिकी के बारे में। तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

और श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा। नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हैं जो मानवता, सेवा और करुणा के मूल भाव से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है विश्व रेड क्रॉस दिवस।

दोस्तों, साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत की थी। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई साल 1920 में और तब से ये संस्था निरंतर सेवा कार्यों में जुटी।

इतिहास हमें यही सिखाता है कि मानवता की सेवा का भाव समय के साथ और भी मजबूत होता गया है। तो दोस्तों, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन उस महान व्यक्ति यानी कि हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने मानव सेवा को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि संकट के समय हर इंसान की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

करता है, चाहे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई महामारी। रेड क्रॉस हमेशा मानवता की सेवा में तत्पर रहता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यही सिखाता है कि सेवा, सहयोग और करुणा केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संगठन के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये सब इसके कार्यों की आधारशिला मानी गई है।

यदि हम इतिहास की ओर देखें, तो पाएंगे कि रेड क्रॉस ने अनेक संकटों में लोगों की मदद की है। युद्ध के समय घायल सैनिकों की देखभाल से लेकर प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य तक इस संगठन ने हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। भारत में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि रक्तदान शिविरों और आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये संस्था समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, तो रेड क्रॉस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में मानवता और सेवा के मूल्यों को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है ना?

दोस्तों, सेवा का भाव ही समाज को जोड़ता है। यदि हम दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़े तो एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। दोस्तों, सेवा का भाव ही समाज को जोड़ता है। यदि हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़े तो यह कदम एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को लाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 20 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
2: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
3: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहाँ फलों की बैगिंग की गई है।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के

0: साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 7:32 और 25 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। तो आइए श्रोताओं, इसके अंतर्गत सुनते हैं शीतल प्रसाद मिश्र का तबला वादन। वादन 3 ताल में निबद्ध है, आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शीतल प्रसाद मिश्रा का तीन ताल में निबद्ध तबला वादन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर

0: लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
1: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग। सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी

0: मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं FM 104.4 MHz पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 9 मई 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 8 मई 2026 को 4:30 से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 8 मई 2026 को 4:30 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-7200। श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है FM 104.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन
2: टेक वन
3: 5, 6, 7, 8
4: सो बेबी
1: लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन
5: लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर हार्ट।

0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। आपके साथ आपका फिल्मी दोस्त हाजिर हो चुका है ढेर सारी फिल्मी बातें लेकर। वैसे कहते हैं ना कि जल्दी का काम आगे का आपको बोलना है।
1: हाँ, सही है, बिल्कुल सही है,
0: जल्दी का काम शैतान का, लेकिन ये जल्दी कई बार हमारी जान पर बनाती है।
1: हम बात कर रहे हैं, जब तक आप जानते हैं,
0: ट्रैफिक के बारे में, यातायात के बारे में।
1: वाहन चालकों से यही कहना है, दोपहिया वाहन पे बिना हेलमेट के मत जाओ।
2: अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो भैया बिछड़ने की संभावना ज्यादा रहती है
1: अपनों से।
0: और इसके अलावा भाई, सिर्फ चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के डर से लगाइए हेलमेट, ये जरूरी है दोपहिया वाहन पर।
1: सीट बेल्ट भी बहुत जरूरी है। हाँ, अरे जब आपने गाड़ी खरीदी तो पैसे उसके भी दिए हैं और हम अपनी एक एक पाई का हिसाब रखते हैं और वसूल करना जानते हैं।
2: तो भैया सीट बेल्ट न लगा के वो पैसा जाया क्यों करते हैं?
1: सीट बेल्ट सिर्फ आपको चालान से नहीं
2: बल्कि बहुत दुर्घटना में आपकी जान की रक्षा करता है। हाँ।

अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो लोग फोन पे बातें करते हुए वाहन चलाते थे, वो तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे भी खतरनाक प्रवृत्ति अब देखी जा रही है। और वो पता क्या, चाहे चार पहिया वाहन हो चाहे दो पहिया वाहन हो, स्पीड की स्लो साइड पे रील स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं टच स्क्रीन फोन में, कितना गलत है। अब आप सोचिए कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं किसी दोपहिया वाहन पर, ड्राइव कर रहे हैं चार पहिया वाहन या बड़ा वाहन, ऐसे में एक हाथ से आप हैंडल पकड़े हैं, स्टीयरिंग पकड़े हैं, दूसरे हाथ से फोन में स्क्रीन स्क्रॉल करते जा रहे हैं रील। सोचिए टोटल कंट्रोल आपने खो दिया अपने वाहन का। अगर इतना ही ज्यादा चस्का लगा हुआ है रील वगैरह देखने का, तो अपने वाहन को साइड से पार्क कीजिए, आराम से घंटे दो घंटे चार घंटे देखिए, उसके बाद ड्राइव कीजिए। लेकिन ड्राइविंग के वक्त नो फोन कॉल, यानी फोन पे बात नहीं, नहीं स्क्रील स्क्रॉल करना किसी भी रील को, और ना ही फोन में अपने आप को खपा देना। इसलिए जरूरी है कि भैया वाहन चलाओ तो सिर्फ ड्राइव करो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और हाँ, जब भी ड्राइव करें आप, तो दिमाग से बहुत सारी टेंशन को दूर कर दीजिए। सोचिए कि जिस मंजिल पर आप जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, हाँ सच में खूबसूरत है, और खूबसूरत मंजिल से मिलने का इंतजार किसे नहीं रहता, बेकरार रहते हैं। खैर, ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि यातायात के बारे में जागरूक करने के लिए आपको बहुत सारी हमारी सरकार और यातायात पुलिस विभाग के द्वारा बहुत सारी जागरूकता सप्ताह और माह का आयोजन किया जाता है। तो भैया सीधी सी बात यह है, किसी दूसरे के समझाने से हम क्यों समझे, खुद ना समझे, अपनी जान की कीमत समझो और अपनों के लिए अपनी जान की कीमत समझो। यातायात के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित ड्राइव कीजिए और सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचिए, क्योंकि जिंदगी यूं ही जाया करने के लिए नहीं है मेरे दोस्त। खैर, इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है। वैसे तो बड़े बड़े हलवा सवाल रहते हैं, पिछले हफ्ते हमने जरा सा कठिन वाला सवाल क्या पूछ लिया, और इतना कठिन भी ना है। हाँ, जब उत्तर देंगे ना तो आप खुद समझ जाओगे इतना तो कठिन ना था। लेकिन हमारे कोई भी दोस्त हमारे साथ नहीं आया, अफसोस हमें इस बात का है। हाय, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। चलो, कहा और किया ये जाए कि हमने आपको एक गाना सुनवाया था, गाना नहीं सुनवाया था, हाँ गाने के बारे में पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि इंद्रजाल कौन से गाने में आता है, आपको गाना बताना था। ओहो, उस इंद्रजाल में तो हमारे सब साथी फंस गए, कोई भी दोस्त ना निकल पाया। कहने का मतलब सीधा यह है कि कोई भी जवाब नहीं मिला, गलत भी नहीं सही भी नहीं, और गलत से तो कोसों दूर, सही से तो अनंत अनंत अनंत दूर। तो चलिए, अब करना क्या है, रिवील करते हैं हम उस सवाल के जवाब को खुद ही। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, हमने आपसे पूछा था कि वो गाना बताइए जिसमें इंद्रजाल वर्ड आता है। तो इंद्रजाल वर्ड आता है इस गाने में, खुद सुन लीजिए।

हाँ हाँ नागिन डांस तो बनता है, लेकिन नागिन डांस ऐसा भी नहीं कि आपकी वजह से दूसरों को परेशानियां होने लगे। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई आपके घर में फंक्शन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही बन जाता है कि आस पड़ोस के लोगों को परेशानी हो। चलिए, आपने देखा होगा अक्सर कर हमारे शहर में बारातें निकलती हैं, घंट बाजा बारात होती है। बहुत समझदार लोग होते हैं, कुछ लोग तो एक साइड छोड़कर चलते हैं और ट्रैफिक के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करते, और वो कोशिश करते हैं उन बारातियों में से कुछ लोग कि सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन वही कुछ एक लोग, चंद बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, सारे रोड को घेर कर चलते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन की ड्यूटी करके अपने घर जा रहा है, रास्ते में ऐसा अवरोध, उसे घर जाने की जल्दी, या किसी को कोई इमरजेंसी है, तो मन खिन्न तो हो ही जाता है। अगर आपकी उत्साह, आपकी खुशियां किसी के लिए कष्ट का कारण बने, तो हमें लगता है कि ऐसी खुशियां ज्यादा बेहतर नहीं होती। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। मगर हाँ, हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि धुन चल रही है नागिन डांस की। तो भैया, नागिन डांस तो लहरा के होता है। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत उछल रहे हो आजकल, तो उछलने का मौका है इसलिए उछल रहे हैं। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपने बहुत कोशिश की और हमारे बहुत सारे श्रोता मित्रों ने इस सवाल का जवाब

अब ढूंढने की भर सक कोशिश की होगी, लेकिन जानी हर सवाल का जवाब गूगल के पास भी नहीं होता, इसलिए जरूरी है पुरानी पद्धतियों को अपना ले, साथ साथ में भाई तकनीक को भी अपनाइए, लेकिन कुछ चीजें बहुत खास होती है। और ये जो गाना है वो अपने दौर का काफी सुना जाने वाला गाना था। चलिए तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज भी एक ऐसा सवाल रहेगा जिसमें आपके दिमाग को बहुत कसरत करनी पड़ेगी। कसरत से हमें याद आया कि आजकल की जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये आराम तलब जिंदगी होती जा रही है। बहुत सारी चीजों को हम कोशिश ही नहीं करते उन पर मेहनत करने की। मान लीजिए घर से लेट नाइट आप रात में 2 बजे सोएंगे, सुबह अगर 7 बजे आपको काम पे जाना है, जल्दी उठेंगे, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, और ऐसे में जो सुबह की एक्सरसाइज है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो भैया अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक है रोजाना थोड़ी ही सही मॉर्निंग वॉक करिए या फिर एक्सरसाइज करिए, बहुत जरूरी है ना। सुबह के टाइम में अगर आप उठते हैं जल्दी और 2-1 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद अगर एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर पूरे दिन चुस्त दुरुस्त बना रहता है और सुस्ती हावी नहीं होती। तो ये बात इसलिए थी कि भाई ये जो गाना, ये जो म्यूजिक चल रहा था उस पर दिल ने चाहा थोड़ा हम भी थिरक लें, लेकिन हमारे इस थिरकने का मतलब उस पर मत लगाइएगा कि हमने बहुत कठिन सवाल पूछा इसलिए हम झूम रहे हैं, ना जीना बिल्कुल ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में फिल्म को फ्राई करने की बारी है। आज की जो फिल्म लेके आए हैं वो पौराणिक कथाओं पर आधारित एक फिल्म है, नाम है उस फिल्म का कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम। कलाकार हैं सिद्धार्थ गुप्ता, सुष्मिता भट्ट, संस्कृति जैना, निवासिनी कृष्णन, जे कार्ते। ये एक पीरियड और ड्रामा टाइप की फिल्म है, डायरेक्शन किया है हार्दिक गज्जर ने। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में इन दिनों रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं को पर्दे पर उतारने की ओर एक विशेष रुचि देख रही है। भगवान श्री राम पर जहां प्रभास स्टारर आदि पुरुष आई, वहीं अब रणवीर कपूर की रामायणम भी स्टार कास्ट और महाबजट को लेकर खूब सुर्खियों में है। वहीं इस बीच श्री कृष्ण लीला पर नए कलाकारों वाली फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम ने भी बिना ज्यादा हो हल्ला के स्क्रीन पर दस्तक दे दी, जो दर्शकों के भक्ति भाव को भिगोने के साथ साथ एक मनमोहक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देती है। कहानी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। कहानी कृष्ण यानी सिद्धार्थ गुप्ता के गोकुल छोड़ने और कंस का संहार कर द्वारिकाधीश बनने के बाद शुरू होती है, जहां द्वारिका में सभी कृष्ण को पूजते हैं पर उनका कोषाध्यक्ष सत्यजीत यानी जे कार्तिक उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जबकि खुद सत्यजीत की बेटी भामा उर्फ सत्यभामा यानी संस्कृति जैना ने ये रोल किया है, कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं। कृष्ण की राधा यानी सुष्मिता भट्ट के संग अधूरे प्रेम के बारे में जानकर उनका प्यार और भी प्रगाढ़ हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्यार का इजहार कृष्ण से कर पाती, वहीं रुक्मिणी यानी निवासिनी कृष्णन को अपनी अर्धांगिनी बना लेते हैं। पर्दे पर हम आगे देखते हैं कि कैसे सत्यभामा की कहानी में कृष्ण की भारिया बनती है, कैसे 1600 लड़कियों को दानव नरकासुर के चंगुल से बचाने में वो कृष्ण की साथी बनती है। फिल्म में हमें भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई जाने अनजाने किस्से देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो डायरेक्टर राइटर हार्दिक गज्जर की ये फिल्म राम मोरी की लिखी किताब सत्यभामा पर आधारित है, जो कृष्ण के हृदय यानी प्रेम लीला को केंद्र में रखती है। इस वजह से दर्शक राधा संग उनके अमर प्रेम के अलावा रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और 1600 पत्नियों संग विवाह की कथा भी जान पाते हैं। कहानी का केंद्र तो सत्यभामा है, जिसे कृष्ण की चर्चित लीलाओं में से एक अलग नया पन्ना आता है। हालांकि फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो है, फर्स्ट हाफ कृष्ण राधा का प्रसंग थोड़ा कमजोर लगता है, उस पर एक के बाद एक आते जाते गाने ध्यान भटकाते हैं। एडिटर के रूप में हार्दिक गज्जर को यहाँ फिल्म को थोड़ा कसने की जरूरत थी, मगर कृष्ण के द्वारिका लौटने के साथ ही कहानी भी ट्रैक पर लौट आती है। फिल्म की कहानी अहंकार, ईर्ष्या आदि के त्याग, प्रेम के प्रसार और स्त्रियों के सम्मान का सुंदर संदेश भी देती है, और उस पर फिल्म का सबसे बड़ा और सबल पहलू है इसका विजुअल अपील। हर सीन इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आंखें ठहरी रहे। कुछ एक्शन सीन्स को छोड़कर विजुअल इफेक्ट्स बहुत आकर्षक हैं।
बात करें अगर कलाकारों

की, तो कृष्णावतारम पार्ट वन हृदयम दिखाती है कि ऐसी फिल्मों के लिए बिना किसी छवि वाले नए चेहरे क्यों जरूरी हैं। सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण के रूप में अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाई है, वो अपने किरदार में फबते हैं। सत्यभामा बनी संस्कृति जैनों और रुक्मिणी के रोल में निवासिनी कृष्ण भी अपनी भूमिका संग न्याय करती है। इसके अलावा कॉस्ट्यूम, आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक जैसे पहलू भी तारीफ के काबिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों देखें, वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है फिल्म देखो ना या देखो, हमारा काम था फिल्म को फ्राई करना, वो हमने कर दिया। मगर आपको बता दें दोस्तों, सत्यभामा के प्रेम में पगी ये कृष्ण लीला एक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस है। बड़े पर्दे पर यह बहुत मनमोहक लगती है। वैसे थारी अपनी मर्जी देखो या न देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। हाँ जी, तो आज के लिए फ्राइंग पैन करते हैं बंद। अगले हफ्ते एक और फिल्म लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे।

0: 100.4 FM.
1: ये है 100.4 FM. बोले तो आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो नाम फिल्मी फ्राइडे है. शुक्रवार सुबह 8:15 से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव रहता है. दोस्तों सवाल आज भी रहेगा और सवाल आज भी ऐसा रहेगा, जतन करने पड़ेंगे बहुत, कोशिश करनी पड़ेगी बहुत, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यकीन मानिए दोस्तों, पिछले हफ्ते के सवाल के जवाब के लिए आपने बहुत मेहनत की और हमें ये एहसास है, तो चलिए इस हफ्ते भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. इस सवाल का जवाब आपको AI और किसी भी सर्च इंजन पर नहीं मिलेगा. अगर आप पहचान सकते हैं तभी आप बता सकते हैं. तो इस लिहाज से और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कठिन सवाल भी नहीं होगा अगर आप पहचान लेते हैं तो. हाँ जी, तैयार रहिएगा. लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, एक फिल्म आने वाली है बंदर. बंदर, हाँ बंदर ही आने वाली है. ये बॉबी देओल की नई फिल्म है, उसका टीजर रिलीज हुआ है. दोस्तों यकीन मानिए, जो बॉबी देओल जी की फैंस है ना, उनके बीच ये टीजर छा गया. सच बताएं आपको, इस बंदर के टीजर में अब तक जो हमने देखा है उसमें बॉबी देओल के बदले तेवर और अंदाज की भाई तारीफ करना बनता है. हाँ, और सही बताएं आपको कि जब हमने ये टीजर देखा रोंगटे खड़े हो गए. हाँ, क्या रहेगा इस फिल्म का, इसके बारे में तो जब रिलीज होगी और पर्दे पर आएगी तो जरूर आपसे बातचीत होगी. देखेंगे बंदर को, है ना. एनिमल द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीतने के बाद बॉबी देओल बंदर बनके आने वाले हैं और इसका टीजर रिलीज हो गया है जो एकदम अलग हटके है. अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और जहां तक टीजर से अंदाजा हमें लगा है, बॉबी देओल ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो डेटिंग ऐप के फेर में फंस जाता है और जिस दिन वो डेटिंग ऐप के जरिए दोनों मिलते हैं उनमें से एक लड़की जो है बॉबी देओल को बहुत बुरा फंसा देती है. अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है टीजर के मुताबिक कि ये जो फिल्म बंदर है इसकी जो कहानी है किसी सच्ची घटना पर आधारित है. अब टीजर में जो दिखाई दिए उनमें बॉबी देओल के अलावा सानिया मल्होत्रा, राजवीर शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले भी हैं. मुझे जहां तक याद आ रहा है ये अनुराग कश्यप के साथ बॉबी देओल की पहला कोलेबरेशन रहेगा और किरदार भी गजब दिखाई दिया है टीजर में. तो खैर, बाकी जो बंदर की रिलीज डेट के बारे में अगर बताया जाए आपको तो 5 जून के आसपास इसमें शो हुआ है और बंदर की कहानी सुदीप शर्मा ने और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है जिन्होंने पाताल लोक कोहरा और उड़ता पंजाब जैसी बेहतरीन कहानियां लिखी हैं. तो देखते हैं कि पर्दे पर आकर ये फिल्म कैसी लगती है और अगर आपको मौका मिले तो आप भी देखिएगा. हाँ, इस कार्यक्रम में दोस्तों आप भी अपने फीडबैक के माध्यम से किसी भी फिल्म के बारे में जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है उसके बारे में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी समीक्षा आप भी हमें बता सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे वहां जहां एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है. सवाल आज भी ऐसा ही है जो खूब छकाएगा आपको, जरा गौर से सुनिएगा. लेकिन उससे पहले तरीका नोट कर लीजिए. आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप करना है BLYFM, स्पेस देना है, फिर उसके बाद अपना जवाब लिखना है, नाम लिखना है, पता लिखना है और इसे भेज देना है फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू और आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए. उम्मीद करते हैं कि आज के सवाल का भी जवाब आप ढूंढ लेंगे. तो तैयार हो चुके हैं आप? हाँ, हम तो एकदम तैयार हैं. हम इसलिए तैयार हैं भाई कि आपके ये सवाल एकदम रेडी हो चुका है, हमारे प्लेयर में क्यू है वो सवाल. जरा गौर से सुनिएगा, आपको बताना है गायक कलाकार का नाम, जो मेल कलाकार हैं, मेल सिंगर हैं उनका नाम बताना है, फीमेल वॉइस के बारे में आपको नहीं बताना है. आपको बताना है मेल वॉइस इस गाने के बोल में, इस अंतरे में कौन गायक है. ये गायिका का नाम नहीं बताना है, आपको सिर्फ गायक का नाम बताना है. तैयार हो चुके? चलिए, हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके.

चलिए अंदाजा तो लगा लिया होगा आपने कि ये कौन गायक कलाकार है। जल्दी से अपना जवाब भेज दीजिए, मुझे इंतजार है। जी हाँ, सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर, और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। क्या कहा, समझ में ना आया दोबारा प्ले कर दो? ठीक है भैया, हम एक और बार प्ले कर देते हैं। चलिए तो एक बार और प्ले करते हैं वही ट्रैक, और आपको बताना है गायक का नाम। हाँ, गायिका का नाम नहीं बल्कि गायक का नाम बताइए। लीजिए सुनिए

0: नहीं, खुशक कभी नहीं।
1: वैसे इसका जवाब तो एआई और किसी भी सर्च इंजन पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप पहचान सकते हैं तभी आप बता सकते हैं, या फिर आपने ये गाना सुना हो या फिल्म देखी हो। तो चलिए जल्दी से बताइए, अपना जवाब भेजिए मुझे, ये गायक कलाकार कौन है। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक बार और प्ले कर देते हैं, सुनिएगा।

0: बस इससे अब ज्यादा और नहीं सुनवाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन दोस्त हैं जो जवाब लेकर आ चुके हैं। हालांकि कुछ दोस्तों के जवाब हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं है जो आपने भेजे हैं। इससे ज्यादा और हिंट क्या दें? तो चलिए अब तो चलना पड़ेगा हमें भी प्रोग्राम से, क्योंकि वक्त हुआ पूरा। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया है तो
1: आपकी राय मेरे बारे में क्या है, क्या है कहिए।
0: बेबाक और बिंदास कहिए, आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला bareli@gmail.com, या फिर आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, शिकायतें, सुझाव सब कुछ लिखकर भेज दीजिए। हाँ जी, फिलहाल हम चलते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। अगले फ्राइडे एक और फिल्मी धमाका लेकर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार, बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
2: फिल्मी फ्राइडे, कट वन,
3: टेक वन,
4: 5, 6, 7, 8।
5: सो बेबी,
2: लाइट, कैमरा, एक्शन, एक्शन, एक्शन।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट, hold your breath, your breath, your breath.
7: We will meet again.
8: We will meet again.
7: We'll meet again.
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको अब सुना रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बने। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं। ये धड़क 2 फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
3: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थीं। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम इस समय। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देखकर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है। आप कहीं भी रहें और सुनते हैं।

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950 प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाज

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब का बात बोलू साहब।

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है? मैं आओ विशाल पंडित जी, शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रखे सम्मान।
1: सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई।
3: नहीं बताती हूँ, दिला में मुझे उठा कर लिया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
1: बस बस करो मेम साहब। मेम साहब, क्या काम नहीं तेरी मेम साहब अच्छे से? तू
3: नहीं विशाल, मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
1: कहता।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
3: तुम?
4: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
5: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश

मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है FM 100.4 MHz पर।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज के हमारे दीवाने हैं सतीश अनेजा जी।
1: नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब हूं। आकाशवाणी बरेली का मैं बिल्कुल नियमित श्रोता हूं, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही आकाशवाणी बरेली का बहुत दीवाना है, प्रोग्राम सुनता है और बड़ी खुशी महसूस करता है। सुख की अनुभूति होती है जब हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसका श्रेय तो सब उद्घोषकों को जाता है जिनकी मधुर वाणी होती है और वो हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज स्पेशल मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को, स्टेशन डायरेक्टर जी को, जो भी आकाशवाणी पर कर्मचारी काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, सबको मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा और परमात्मा से दुआ करूंगा भी ये हमारा जो मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है और ये सफ़र जितना 90 साल किया है तो ये सफ़र आगे भी बरकरार रहेगा, ये मुझे आशा है, क्योंकि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज मैं आपके सामने कुछ अपनी बात भी कर रहा हूं तो ये भी मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है, और हम आकाशवाणी के जरिए हमारे जो श्रोताओं में जो आपसे रिश्ते बने हैं उसका श्रेय भी आकाशवाणी को जाता है, क्योंकि कोई श्रोता किसी का नाम कहीं से आता है, किसी का कहीं से आता है, हम सोशल मीडिया के दूसरे से एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो हमारे ऐसे लगा लो रिश्ते बन चुके हैं, और रिश्ते भी इतने मजबूत हैं, जो खून के रिश्ते हैं वो पीछे रह गए हैं और हमारे जो रेडियो के परिवार के रिश्ते हैं ये आगे आ गए हैं। तो इन सबका जो क्रेडिट है, सबका जो श्रेय है, जो स्पेशल और स्पेशल आकाशवाणी को जाता है, और उसमें आकाशवाणी बरेली का बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ के जितने भी उद्घोषक हैं उनकी बहुत मीठी वाणी है, उनकी पेशकश प्रस्तुति बहुत अच्छी है जिसकी हम कायल हैं, और बिल्कुल मैं उनको भी सलाम करूंगा, उनकी मेहनत को सलाम करूंगा और उनकी निष्ठा को सलाम करूंगा, जो हम हफ्ते बढ़ाए हुए हैं और बड़े शिद्दत से वो प्रोग्राम पेश करते हैं और शिद्दत से हम सुनते हैं। परमात्मा हमारा ये साथ ऐसे बनाए रखे। और एक बार फिर से मैं सभी को, सभी श्रोताओं को भी और आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को सलूट मार के सलाम दूंगा और सलूट मार के बधाई दूंगा भी ये सफ़र हमारा ऐसे चलता रहे और परमात्मा हमारे अंग संग रहे और हमारा आकाशवाणी का नाम और भी विदेशों में भी गूंजे। नमस्कार
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज के हमारे आकाशवाणी के दीवाने थे सतीश अनेजा जी। आपको बता दें कि आपने ट्यून किया है न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर, आप सुन रहे हैं और हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 एफएम बोले तो 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बरेली आपके साथ है।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 14.4 MHz है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:05 और 9 सेकंड। अब समय है आपकी पसंद का। जी हाँ, आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आपकी ढेरों सुरीली ख्वाहिशें लेकर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में, तो इंतजार आपका है। वैसे 166 कमेंट आ चुके हैं, अगर आप तक अभी पोस्ट नहीं पहुंची है, सर्कुलेट नहीं हुई है, आपने नहीं देखी है, तो एक बार अपने आईडी पर जाइए और आकाशवाणी बरेली करके सर्च कीजिए, पहली पोस्ट आपको मिलेगी आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित। तो देर मत कीजिए, 100, 200, 300, 400, 500 कमेंट कीजिए, मगर हाँ कमेंट एक बार ही कीजिए, एक श्रोता बार बार कमेंट ना करें, इससे व्यवधान होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट वाले कमेंट ही हम शामिल करेंगे। किसी भी कमेंट के साथ अगर आप कोई पिक्चर अटैच करते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं है।

तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम हैं आपके साथ। जी हाँ, आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली, और यहाँ अब आपकी धुआंधार सुरीली ख्वाहिशें बिखरेंगी। प्रोग्राम का नाम तो आपको मालूम ही है, पोस्ट पे पढ़ लिया है, तभी तो आप कमेंट करेंगे। तो हम तैयार हो चुके हैं, आप भी तैयार हो जाइए। जी भर के कमेंट कीजिए। जी भर के मतलब है एक बार ही कमेंट करें, लेकिन सभी दोस्त कमेंट करें। आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गाना। फिल्म का नाम है तलाश, और तलाश फिल्म के इस गाने को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओवराय और इनके सभी साथी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन, शंकरपुर उसावा बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता यादव, विनीता, सुनीता, अनीता, सूरत, श्री यादव और इनका पूरा यादव परिवार। विरमगाम गुजरात से आप हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी भावसार, गंगानगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजू लता राम और श्याम रवि आर्यन, रंजीत कुमार, रामानंद कुशवाहा और इनके साथ ही नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, इस्लामुद्दीन, बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी, पटियाला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू कमेंट किया है। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हासमी, शमशुल कमर रायगंज डुंडवारा से, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़ और इनका पूरा रिवाड़ परिवार, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू कमेंट करते हैं। गाँव छत्तो मादारणी सिंध से दानिश अयाज टालपुर, तैयकुल तराज टालपुर और इनके सभी साथी, जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलेज डिकेस्ट्रो, लसुड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, देगांव पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया, रंजीत थोरात और इनका पूरा थोरात परिवार, हमें कमेंट करते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, और ये कमेंट हमें मिला है श्यामू चौहान, राजकरण, सर्वित, मोनिका, प्रतिमा, सावित्री और इनके परिवारीजनों का, ग्राम वीर किठाई दरियाबाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। कमेंट करते हैं महाराजा दरवाजा ईटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, अनम, सोहेल हसन, रसीद वारशी, यशफ अब्बासी और इनके परिवारीजन। कटरा चांद खां पुराना मंदिर वार्ड नंबर 11 बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी मौर्य, कपिल वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। शाही मार्केट सोहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी।

और कदीर चौधरी। गंज झुंडवाना से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफन बर, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, नीटू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, गुड्डुगू भाविक सिक्का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिया। नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। यह हमें कमेंट मिला है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से। गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और नीलेश एले। गांव रावर जिला करनाल से विनोद लखनपाल और इनके सभी साथी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी। पद्मा ढाकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नीची शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनका पूरा परिवार। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर सिंधा, जसवीर जसी, सीता और गीता। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। करगना बरेली से आप हैं बीडीए कॉलोनी, मनकारा मंदिर से पनीलाल सागर, बेनी सिंह, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। आप हैं विष्णु मिस्किन, ऋतिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनू, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से। और हमारे ये साथी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगल इंगले, आशीष मेहरकर और इनका पूरा परिवार। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा और नोखेलाल वर्मा। जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराजा आजाद नगर, अक्सर हरिद्वार से। उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल। आर्य नगर कोका भिलाई से धमदा सुखरा कलां से आप हैं अमित जंगेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल। हमें कमेंट किया है बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट ने, हिंदराज, रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा कुपटी महाराष्ट्र से। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, खारवन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। आप है बुलढाणा महाराष्ट्र राजमाता नगर से नरेंद्र, नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। बोरखेड़ा पितरामल उज्जैन मध्य प्रदेश से आप है विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाटा और इनका पूरा परिवार। हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। ये कमेंट हमें मिला है आसल गांव बाजार तहसील जलगांव जामोद खाम गांव महाराष्ट्र से। राजू माठे, गजानन माठे, संजय और ज्ञानेश्वर माठे। शेगांव से संतोष एस काले, उमरा अटाली खाम गांव से गजानन सालोकर, सुरेश भिटे पाटिल, मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र जी भटकर और इनके सभी साथी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और इनका पूरा पूरा परिवार। पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा का यह कमेंट हमें मिला है कासगंज उत्तर प्रदेश से। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म तलाश से ये गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

आपके साथ है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज जोन AIR पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम दिल एक मंदिर। लता जी की आवाज है, हर्षरथ जयपुरी ने शब्द रचना की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को पसंद करते हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। अब आप सबको साथ लेते हैं, आप हैं गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और उनके तमाम साथी। हमारे ये जो श्रोता मित्र हैं वो हैं गैवी बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से, अरुण कुमार मालवीय दर्द और इनका पूरा मालवीय परिवार, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथापत जी हैं और इनके तमाम साथी हैं, और गुजरात पाटन से धीरज बी रावारी और ये कमेंट बड़ी खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का है। ग्राम उड़ला जागीर ईदगाह बरेली से सरताज खान, दानिश खान, वारिस खान, सोनिया अलीना और इनका पूरा परिवार। हितेंद्र दास जी भी हैं, कहां से हैं भाई, आपने कुछ लिखा तो है नहीं, सिर्फ आपकी आईडी देखकर हमने नाम बोल दिया है। और कमेंट करते हैं हमें राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मनु शिव सेठी, करणपुरी इस्माइल टूटेजा और इनका पूरा परिवार, गोविंदगढ़ माजीवाला श्री करणपुर राजस्थान से, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके सभी साथी, ज्योतिनगर नुखार राजस्थान से पुखड़ा बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके तमाम साथी, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह दूलापुर मुरादाबाद से कमेंट किए हैं। उच्च पट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या, अन्नू और अनुराधा गोस्वामी का कमेंट मिला है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। और कमेंट करते हैं सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी,

इमरान शेख, रेहान शेख, ये सभी हमारे साथी वारसी क्लब के मेंबर हैं। और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान और इनके तमाम हमनवा, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, आप पलारी छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा भिमरा अनेजा का कमेंट मिला है। कमेंट हमें आपने भी भेजा है। जलालाबाद, शाहजहांपुर से प्रदीप मिश्रा, आर्यन मिश्रा, अर्णव मिश्रा और इनके तमाम साथी और मित्रगण, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से कमेंट किए हैं। रिंगड़ी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनका पूरा परिवार, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया कमेंट करते हैं। गांव छत्तो मदारणी सिंध से अब्दुल हक टालपुर, जैनुल्ला एजाज अली, मोहम्मद काशिफ टालपुर और इनके सभी साथी, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके सभी साथी हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान कमेंट करते हैं। ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके तमाम साथी। एक जरूरी बात दोस्तों, कुछ एक दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कुछ एक नामों को इधर उधर करके बार बार कमेंट कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही कमेंट शामिल होगा, बाकी और कमेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ नाम आप बार बार भेज रहे हैं। एक कमेंट में वही नाम है, कोई और दोस्त और भी उन नामों को भेज देते हैं, तो ये अगर देखा जाए ईमानदारी तो नहीं है दोस्त, है ना। चलिए और दोस्तों के साथ लेते हैं। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव और शौर्य नामदेव, समर्थ नामदेव, सार्थक नामदेव और ये जो कमेंट मिला है वो हमें बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग का है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ है। पीपलूर सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा का कमेंट मिला है। मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज भी कमेंट करते हैं। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य का भी ये कमेंट अभी अभी मिला है। कुछ और साथी हैं, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी बारासा, शगुन बारासा और इनका पूरा परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूछा परिहार और इनका पूरा परिवार। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता, ये कमेंट हमें मिला है। श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे का धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से और कमेंट करते हैं। भोला कॉलोनी घरौंडा करलाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी गुंजन, साहिल और वाणी जयजान और हमारे ये साथी हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाथार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और ये कमेंट तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वही नाम इस कमेंट में है। तो आगे बढ़ेंगे। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा कमेंट करते हैं। और मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान और इनके सभी साथी। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान जी हैं और ये कमेंट मिला है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा और इनके सभी साथी। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी हैं। और ये हैं मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे कौन साथी हैं, प्रदीप, रजनी, पार्थ, पीहू और सार्थक। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी, चांदनी, नंदिनी कुमारी और इनके सभी साथी। आप हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा कमेंट करते हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीबी कुल थे और माशा खिलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और इनका पूरा परिवार गंज डंडवारा से हैं। कमेंट करते हैं धनबाद झारखंड से रामचंद्र गुप्ता और इनके सभी साथी। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित चौहान, गार्वी और हिमाक्ष का कमेंट है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कट्टारे और इनके तमाम हमलवा। और ये हमारे साथी हैं सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन और धुर्रा बांधा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू और इनके सभी साथी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना जी हैं। और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और हमें ये कमेंट मिला है। अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा का। और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा
और इनका पूरा

पूरा परिवार। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनका पूरा परिवार है। और आप शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम नदीम इदरीसी और असद बाबू, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, अरीबा हबीबा का ये कमेंट पटियाली रोड गंज डंडवारा से है। और आप हैं शेरगढ़ गल्ला गुजाम के पास से अहसान इदरीसी, शायरा मुंतशा सादिया और इनका पूरा परिवार। कस्बा बराना, जिला अम्बाला हरियाणा, तो आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके सभी साथी। भोजपुर तगा, सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद राणा, राहत अली और वकील अहमद। ये कमेंट करते हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कुछ और दोस्तों को भी साथ लेंगे, छोड़ेंगे किसी को ना। मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर। कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। और हमारे ये साथी हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। जैन मंदिर वाली अली कुराबड़ी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन अंसारी और इनका पूरा परिवार। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई और इनका पूरा संगई परिवार। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल कमेंट करते हैं। और हमारे ये जो साथी हैं वो हैं, कौन हैं, डॉक्टर आर वी सिंह, अजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय कहां पे है, नगर पंचायत आल्लागंज शाहजहांपुर से हैं। तो चलिए और भी दोस्तों को साथ लें क्या। कुछ कमेंट बार बार मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बार बार कमेंट शामिल हो जाएगा, एक दोस्त का एक ही बार कमेंट होगा। आप हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। ये कमेंट हमें मिला है उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह और महेश्वरी देवी जी की ओर से। कमेंट करते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से इनके सभी साथी। और आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा। आकूट से आप हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावेराव और इनका पूरा परिवार। और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से बेडी के हमारे साथी हैं नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजा जय लाम से, हर्षिता लाम से और इनका पूरा परिवार। अब इसी गीत में और भी दोस्तों को साथ लेते हैं। आप हैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से संजय वर्मा, शालिनी वर्मा और इनका पूरा परिवार। सरोज चौक अमरावती से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आलिया और इनके सभी साथी। और कोई और दोस्त हैं, चलिए पटियाली रोड गंज डोंडवारा से आप हैं आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवारीजन। और ये कमेंट मिला है हमें आप सबका। चलिए तो यहां पर दिल एक मंदिर फिल्म का ये गाना प्ले करते हैं, बाकी और दोस्तों को अगले गीत में शामिल करेंगे।

0: की सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम वही है, नाम है आपकी पसंद सच मानिए। आपके कमेंट पर आधारित तो इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। अगला गीत आपको सुनवा दें, फिल्म का नाम दिल ही तो है, आवाज मुकेश जी की है, साहिल उदयनवी के बोल और रोशन का म्यूजिक डायरेक्शन। मगर पसंद किन की है? आप हैं गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से, जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। रांची झारखंड से अरुण जायसवाल, संजू जायसवाल और इनके सभी साथी। अब आप सबको साथ ले लेते हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। कमेंट किया है चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा ने। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, मदर गेट भाऊपुर मड़ियाहूं जौनपुर से आप हैं, शाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अरशाद, अर्जरा तबस्सुम। रायपुर अनिल, जिला बनारस से माशा अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया पर भी। तहसील रोड गंजवारा से के एच राय, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हमाद जमील और इनके तमाम साथी हैं। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू।

ओ भाई भारती देवी। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, ऋतु सिंह, प्रीति सिंह, संकल्प, कृषभ सिंह और वेदा सिंह। प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली आप हैं कमर कॉलोनी भटवा जिला खरगोन से। और यही जो कमेंट मिला है वो हमें एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा शकील अहमद, शहनाज खान, बेबी नुसरा खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। माशा सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभिमीत, भगवान देवी, स्वाति सिंह, तान्या और इनका पूरा परिवार। ग्राम पंचायत बाखरगंज, तहसील फरीदपुर, पानी की टंकी के पास, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तनवी बोध। मौसमपुर पट्टी से नीरज यादव और इनके सभी साथी। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू लाला चौरसिया, पूजा पिंकी चौरसिया, बाबू शिवा सिवानी चौरसिया और कासगंज से योगेंद्र नायक, बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित वीर चौरसिया, सुजाता पंकज चौरसिया, बीहू और दिया खानपुरी। ओहो गणेशपुर गंज डंडवरा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन शेख और इनका पूरा परिवार। सुरेंद्र खुराना जी न्यू उल्तानगर दिल्ली से कमेंट करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट से निपी साहनी और इनके सभी साथी। जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी, आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, जसपुर रोड दुलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब भाई, साहिबा महबूब, समीर अंसारी, वारिस अंसारी, अलशिफा परवीन और इनका पूरा परिवार। कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक और निर्भय गुप्ता। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके सभी साथी। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिक, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज। शांति नगर देगलोर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आप है संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। गांव गड़ी कोटा जिला पंचकूला से आप हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीवान बेगम, शानी अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा अंसारी, आयशा उमर अंसारी और समीना अंसारी। भुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। विप्र नगर से बाला प्रसाद जी करवा और इनके सभी साथी। क्या बात है, दो दो कमेंट कर रहे हैं भाई, एक ही कमेंट काफी है। पुराना तालाब डुमराव से बलियोल्ला अंसारी, आसमान नाज अंसारी, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, मोहम्मद कलीम सखनी, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज, सरिता गौतम जी, रेलवे रोड गंज डंडवारा से। ग्राम पोस्ट हर हरपुर मटकली जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और इनके सभी साथी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। लहो डडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर, नूतन, भुवनेश्वरी देवी, विनेश कुमार और रागिनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। नदीम बाकी, अलीम, कलीम, अजीम, अदीम बाकी, अब्दुल गनी और इनके सभी साथी। शेरकोट बिजनौर से हैं मालियान सरधना, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जी वीएम जैन। कस्बा उगहती से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद समद और सादिक सिद्दीकी। बांडीवाली फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। पाजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल लाड़ी, शालिनी तिवांशी, वाणी खेड़ा, अरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनका पूरा खेड़ा परिवार। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैरजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया जी, आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह, कोको रानी। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, हसमस, इनाया, शानूर, फलक नूर, ताज मोहम्मद, अबानूर और इनके सभी साथी। बसमत रोड परवणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत और कंचन कारेगांवकर। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर और इनका पूरा परिवार। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। काशीपुर उत्तराखंड से मोहम्मद सोहेल और इनके सभी साथी। एकता क्लब सिंधौली से आप हैं इमरान शेख और चक 5 एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, राही, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल।
ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन।

अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ भाई, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, श्याम नगर नवादा से, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, हरियाणा से आप हैं केशव यादव, आनंद सनोज और सोमेंद्र यादव, रेहान खान भक्कर पंजाब से, आप हैं नाभा पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु भक्कर पंजाब से, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, मोहम्मद और इनके सभी साथी हैं। चलिए जेल रोड रायगढ़ से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अकरम, गुड़िया खातून, ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सदानंद यादव, विवेकानंद और नितेश हैं, छनेश्वर गोड कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री और इनके सभी साथी, गली सिकलापुर मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य, वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से और आप कोटा मक्खन बरेली से अबरोज अंसारी, फारूख अंसारी, रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके सभी साथी, कहां से जगह का नाम आपने लिखा नहीं। चलिए एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशा रानी संजना परी आराध्या खड़ से, कार्तिक खड़ से, देविका चौधरी, स्वाति, प्रिया चौधरी और इनका पूरा परिवार, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अंडवानंद, सत्यमानंद, पाकुड़ झारखंड से बोड़ागाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, कमेंट करते हैं नितिन कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। चलिए तो आप हैं जमशेदपुर से कदमा के साथी हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और इनका पूरा परिवार, गुरमीत सिंह मीताजी साउथ दिल्ली से, मौला सदवाड़ा से सलोनी सुबोध चौरसिया, खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, आप हैं अलखनाथ मंदिर के पास बरेली से बेंचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित और महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी, छिंदवाड़ा से। ये मैसेज हम कई बार पढ़ चुके हैं, कमेंट आपका कृपया करें, एक ही कमेंट करें आप तो छोड़ दीजिए, है ना। आज के लिए गांव जलालपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्य, लविश और इनके सभी साथी, डबल नाम हो रहे हैं भैया, भाटनी मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर और इनके सभी साथी, और आप हैं गांव अलगी डांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से ज्योति जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल और फूलजी यादव। तो आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का ये गाना। यहां तक 211 कमेंट शामिल हो चुके हैं मेरे दोस्तों, आपकी फरमाइश आपके नाम करते हैं।

वैसे आपको बता दें दोस्तों कि 10:42 तक हमने 211 कमेंट शामिल कर लिए थे। इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे पास 12 13 14 मिनट का समय बाकी है, लेकिन कमेंट कम हो गए। अब ऐसा क्यों, सिर्फ 221 कमेंट बस इतने से? खैर कोई बात नहीं, आप जितने भी कमेंट भेजेंगे उतने हम शामिल करेंगे, गारंटी है। चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसकी झलक अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम है गुमनाम। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, समीर ने बोल लिखे, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, मगर इसको दूर बैठकर सुन रहे हैं सहलार पहलगांव कश्मीर में पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके सभी साथी। अब आप सबको साथ लेते हैं क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है आप सबसे। आप हैं पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ पदम नगर से, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार, और मोहम्मद आसिफ बहेड़ी से हैं, और डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदरकर, आरब और अर्पिता हैं, और ये मैसेज है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहेल भारती, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, ये डबल हो रहा है मुझे लगता है, और मौर्य बस्ती सुरखा बरेली से राम गोपाल मौर्य और इनके परिवार के सभी साथी हैं, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमडी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलेंद्र कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू। आप हैं गांव वाडाघाना कोट विला जिला पंचकूला से अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, बंतो, रुलदी, खदीजा, सुहाना, रिजवाना, जावेद, परवेज, जाहिदा और रिजवान खान, और जावेद सिद्दीकी बरेली से हैं। भाई यहां तक 221 कमेंट शामिल हुए, अभी समय बहुत बाकी है तो कमेंट करते रहिए। अब तो आपकी पसंद का गाना सुनने की जो संभावना है वो भी बढ़ गई है। गुमनाम का गाना सुनते हैं अभी तो।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.4 FM न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से आपकी पसंद। जैसा कि हमेशा होता है 15 मिनट रह जाते हैं कार्यक्रम के, तब तक आपके कमेंट 200 225 250 कमेंट पूरे हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट भेजने के मालिक हैं और हम आपकी सेवा में आपके कमेंट पढ़ने के बिल्कुल सेवादार हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस गीत की जो धुन अभी आपने सुनी ना, फिल्म का नाम है चरणों की सौगंध और अलका याग्निक बस साथियों की आवाजें हैं इस गाने में। आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत निर्देशन किया है। इस गीत में साथ लेते हैं आप सबको। आप हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख, शोएब हासिम, अरम बाबू, किशमन नूर और कौन हैं? आप हैं विपिन कुमार शाके, सपना शाके, रविंद्र शाके, राजेश, रमेश चंद्र शाके, राजीव, प्रदीप शाके, रंजीत शाके, सिद्धार्थ शाके, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा शाके, प्रतिज्ञा शाके और इनका पूरा शाके परिवार वीरपुर बिलसड़ अलीगंज एटा से। और भी दोस्तों के कमेंट मिले हैं, यानी कि जो चरणों की सौगंध फिल्म का ये गाना है वो आप सबने सुना चाहा है। आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी, नाजिज अंसारी, तबस्सुम और मोहम्मद शमी, हाँ ये भी तो साथ में है। शनि बाजार कस्बा उगहती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायरव गुप्ता और इनके सभी साथी, मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, शालू गौतम, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं और ये नाम रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसे नाम को छोड़ रहे हैं। फिलहाल गाना भी इन फिजाओं में छोड़ रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म का नाम चरणों की सौगंध और 10:58 तक भी अगर आपका कमेंट मिलेगा

जी हाँ, अपने वादे के मुताबिक हमने कहा था कि 10:58 तक भी अगर कोई कमेंट मिलता है तो शामिल होगा, लेकिन वो टेक्स्ट कमेंट होना चाहिए, पिक्चर कमेंट नहीं। फारबिसगंज बिहार से श्याम सुंदर महेश्वरी, पुष्पलता महेश्वरी और इनका पूरा परिवार, बाकी जिनके नाम शामिल हो गए या जिनकी पसंद के गाने प्ले हो गए वो भी मैसेज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही चलता है ना दोस्तों। तो फिलहाल हम चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी बेबाक राय, अपनी शिकायत, अपना सुझाव और तारीफ सब लिख सकते हैं आप। आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा खत लिखना है तो पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2403001, और ईमेल भी कर सकते हो आपका पत्र मिला .bareli@gmail.com पर। फिलहाल आज के आपकी पसंद प्रोग्राम से हमें दीजिए अनुमति। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, सांसों का क्या भरोसा इस एल्बम से अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी, ये भजन सुना मूलराज मिश्र की आवाज में। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत जिसे गाया है अगम कुमार निगम जी ने। एल्बम का नाम है बेवफाई का आलम। तो लीजिए सुनिए ये पेशकश।

अगम कुमार निगम और तुलसी कुमार की मिली जुली आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला जो पेशकश है अगली, वो पिया से मिलके आए नैन, ये टाइटल सॉन्ग है इसी एल्बम का, हेमा सरदेसाई की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली एफ एम 104.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर इस समय आप सब रंग सुन रहे हैं। कंचन और सखियों की आवाजों में ये कैसे बनी एल्बम से ये पॉप सॉन्ग सुनते हैं।

104.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम है सबरंग। आइए सुनते हैं बोलो तारा रारा एल्बम से दलेर मेहंदी की आवाज में ये तड़कता भड़कता गाना।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है।

0: सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं।

0: कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
1: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्क

0: गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: अभी दोपहर है, बस कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाई बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाय

0: अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
0: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि

0: कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है, मेरी जगह वही है धरती की गोद, इन पेड़ों इन जंगलों में इस धूल इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार 25 मई को शपथ लेगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। टीवी को समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न दलों की बैठक आज होगी। आकाशवाणी की स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य के भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने

के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा भी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी 8 मई से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 2,71,093 सीटों के सापेक्ष अब तक 3,80,000 से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: बारह बजकर चार मिनट का वक्त। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। शिल्पी आ चुकी है आपके लिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर। फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को भाई हम स्वयं सिद्धा में बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी लाइफ से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और डेफिनेटली हम ऐसी महिलाओं से कभी कभी आपकी बातचीत कराते हैं और कभी कभी हम खुद उनके बारे में आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया और उनकी लाइफ में भी कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जो भी अचीवर होता है उससे आप देख कर कहते हैं अरे इन्होंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो उनकी लाइफ यानी सक्सेस जर्नी होती है उसको अक्सर छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनको भी कहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपको लगता है कि इनके हाथ में तो फटाफट ये मिठाई आ गई होगी जो आज मुकाम पर पहुंचे, जिस मुकाम पर हैं। तो भाई किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो उनको ओवररूल करके आगे बढ़ता है यानी उन दिक्कतों से घबराता नहीं है, उनसे लड़ता है और आगे बढ़ता है, वही सक्सेसफुल होता है। और भाई आज एक खास दिन भी है, आज UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। मतलब ये पूरा सप्ताह ही रोड सेफ्टी को डेडिकेटेड है। 8 से 12 मई मनाया जा रहा है और WHO इसे होस्ट करता है। और आप जानते हैं कि क्यों रोड सेफ्टी ज़रूरी है, भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम आपसे बातें भी करेंगे और कुछ उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जो जिन्होंने काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी ड्राइविंग में अपने हाथ मतलब चलाए और उन्हें लगा कि नहीं ये मुश्किल काम नहीं है और बड़े बड़े ऐसे वाहनों को हाथ लिया जो लगता था कि ये कोई महिला नहीं कर पाएगी। और उन लोगों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वयं सिद्धा में एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही आज एक बहुत स्पेशल डे, उसके बारे में भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे किसी स्पेशलिस्ट से। बस सब कुछ है इस प्रोग्राम में, जाने के लिए जुड़े रहिए हमसे यानी 100.7 FM रेनबो से, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया जाएगा पूरा 8 से 12 मई तक। और आपको ये भी बता दें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। भाई होता ये है कि सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें नहीं होती हैं, जिनको बढ़ावा देना इस जो वीक मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है। साथ ही जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होते हैं, उनको लेकर अवेयरनेस फैलाना, और जो पैदल यात्री होते हैं या फिर साइकिल राइडर्स, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। और आपने कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं लोग, या फिर इंजर्ड ही नहीं होते, अपनी जान तक खो देते हैं और अपनों को खो देते हैं। तो भाई आपको बताएं कि कई ऐसे जब किस्से आप पढ़िए तो आपकी भी आंखें नम हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश का ही एक किस्सा था कि जिसमें सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद बेटों ने उनकी शोक सभा में हेलमेट और संविधान की पुस्तकें बांटी थी ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहनने और जागरूक करने के लिए कि आप सेफ ड्राइविंग कीजिए, इसके लिए कई परिवार उन्होंने जिन्होंने अपने सड़क हादसे में किसी न किसी खो दिया तो लोगों को अवेयर किया। तो अवेयरनेस जो होता है, शब्द छोटा सा है लेकिन लोगों को जागरूकता जो पैदा करना लोगों के बीच बहुत जरूरी है। और चूंकि प्रोग्राम स्वयं सिद्धा है तो हम बात करेंगे किसी ऐसी महिला की जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना। और आज स्वयं सिद्धा में हम बात करेंगे, आज कहानी सुनाएंगे केरल की राजधानी में रहने वाली राधामणि की, राजधानी नहीं राधामणि जी की, उर्फ मनी अम्मा, जो हैं तो 76 साल की लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे चलाती हैं जैसे ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। 76 साल की मनी अम्मा ट्रक, क्रेन, यहां तक जेसीबी भी चलाती हैं और उन्हें काफी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जिसमें हेवी व्हीकल्स के लिए भी उनके पास ये लाइसेंस है। और आपको बता दें कि उस समय उन्होंने ड्राइविंग सीखी जब औरतों के लिए ये सब चीजें सोचना भी, करना तो दूर की बात है, सोचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जो कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। कुछ ऐसी मुश्किलें पड़ी जिससे उनको लगा कि नहीं, अब ये काम उन्हें करना चाहिए, और बखूबी किया और लोग उन्हें इसीलिए मनी अम्मा कहते हैं। और साथ ही ड्राइविंग, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें गाड़ियां चलाती हैं तो उनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं।

जी, तो केरल की राधा मनी उर्फ मनी अम्मा की हम बात कर रहे हैं, और मनी अम्मा जिन्हें कई लोग ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं। और आपको बता दें, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के व्हील ऐसे घुमाती हैं जैसे कोई बड़ी बात ना हो। 10th का एग्जाम देने के बाद उनकी हो गई थी शादी, और 1978 में उनके पति ने खोला ड्राइविंग स्कूल। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पति का देहांत हो गया तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना और जीवन जीना, ये जीवन की रीत है। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने ये स्कूल खुद संभाला, और यहीं से शुरू हुई उनकी ड्राइविंग की जर्नी। तो ड्राइविंग की जर्नी उन्होंने क्या किया और कैसे अपने आप को इस फील्ड में वो लाई और कैसे हिम्मत जुटाई, ये सब जानेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले हम तो यही कहेंगे कि चाहे ड्राइवर अम्मा हो या फिर कोई और, जिंदगी में आगे बढ़ना ही जिंदगी की पहचान है। तो अगर आप भी कहीं आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में या जिंदगी में ब्रेक लग गया है, तो बस उस ब्रेक को छोड़िए, आगे बढ़िए और बस संभलते हुए जिंदगी के मजे लीजिए।

0: जी 12:29 और 15 सेकेंड 100.7 FM रेनबो पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्वयं सिद्धा। और ये जो सफर था हम आपको जो बता रहे थे मनी अम्मा जी का, वो जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा था ना, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आज है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। तो इस विषय में हम बात कराएंगे आपके एक्सपर्ट से, और साथ ही उनका बहुत बहुत पहले हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह जी, जो गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बात करते हैं उनसे इस विषय में भी, और साथ ही उनसे कुछ उनकी भी बातें करेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी डॉक्टर निशा सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में।
1: जी नमस्कार, थैंक यू
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम होता है स्वयं सिद्धा, वो डेडिकेटेड होता है उन महिलाओं को जिनसे हमारे तमाम लिसनर्स जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो प्रेरणा ले सकें। तो डॉक्टर निशा सिंह जी, सबसे पहले तो आप जो आज का दिन, उसके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी बात। जब आप इस फील्ड में डॉक्टर आपने बनने को सोचा, तो कुछ मन में दुविधा थी कि आगे बढ़ जाऊंगी, या फिर दिमाग में कुछ परेशानियां चलती थी बींग ए फीमेल?
1: संभव शायद मेरा हमेशा से बचपन से माइंड में था कि डॉक्टर बनना है
0: जी,
1: और कोई दुविधा थी नहीं इसके बारे में
0: जी।
1: मालूम था कि डिफिकल्ट होगा। मेरे कजन फैमिली में एक कजन ब्रदर थे जो कि मेडिकल में जा चुके थे उस समय तक
0: जी।
1: जब हम तो और फैमिली से भी कुछ था ऐसे कुछ कि डॉक्टर बनना है
0: जी जी,
1: तो कोई दुविधा तो नहीं थी। बट बीइंग अ फीमेल टफ होता है ये मालूम था, और जब एक्चुअली किया तो पाया कि हाँ सच में डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप सोच लें और अगर आपका पैशन है तो मैनेज हो जाता है।
0: मैम, आपकी जो फील्ड है ऑन्कोलॉजी की फील्ड, इसमें ये बहुत डिफिकल्ट और कई चैलेंजिंग है, क्योंकि काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जो जब भी कैंसर नाम का शब्द सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं। और आप एज ए डॉक्टर उनको कैसे बताती हैं कि भाई आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे अर्ली अगर आप नोटिस कर लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो एज ए डॉक्टर आपका क्या इस बारे में एक्सपीरियंस रहता है, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए।
1: हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूंगी कि जैसे

0: हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एक नया डिपार्टमेंट खुला है,
1: जी
0: गायनेकोलॉजिकल ऑनकोलॉजी,
1: जी
0: वो हम लोग स्त्री कैंसर रोग विभाग भी कहते हैं।
1: जी
0: और एक्चुअली काफी लोगों के मन में ये थोड़ा सा मैं क्लियर इसलिए भी करना चाहती हूँ, एक कैंसर स्पेशलिस्ट कौन होता है। तो लोग जो है एक्चुअली किसी भी जगह के कैंसर का ट्रीटमेंट तीन तरह से होता है, या तो सर्जरी से होता है, या
1: जी
0: रेडिएशन से होता है, या कीमोथेरेपी मेडिकल ऑनकोलॉजी।
1: जी
0: तो तीनों स्पेशलिटी अलग होती है, एक तो ये चीज है।
1: जी
0: तो रेडिएशन ऑनकोलॉजी के डॉक्टर अलग होते हैं, मेडिकल ऑनकोलॉजी के अलग होते हैं, और सर्जिकल फील्ड्स जो हैं उसमें यूजुअली जिस एरिया का है उसके डॉक्टर्स अब खुद ही उसका इलाज करते हैं।
1: जी
0: एक जनरल कॉमन फील्ड होती है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो हेड टू टो सभी जगह के बारे में जानते हैं और करते आए हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से हर एरिया के कैंसर का उस एरिया के स्पेशलिस्ट ही सर्जरी करते हैं। तो मैं जैसे बेसिकली गायनेकोलॉजिकल जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उसी में, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं, वही फर्दर स्पेशलाइज करके अपनी नॉलेज और अपनी वो बढ़ाकर उस चीज में काम करते करते एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट डेवलप होते हैं।
1: जी
0: कुछ समय से इसकी डिग्री भी शुरू हो गई जिसको एमसीएच गायनी ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो नए बच्चे जो आते हैं वो डायरेक्टली पीजी करने के बाद इसमें एमसीएच भी करके गायनी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो एक तो ये चीज हुई। तो हम लोग बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का, जिसमें यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और फेलोपियन ट्यूब बल्बल कैंसर, ये वाले आते हैं।
1: जी तो
0: तो
1: डॉक्टर
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है आज, और इसकी जो ऑफिशियल थीम है वो नो वुमेन लेफ्ट। तो डॉक्टर साहब, बस हम अपने सभी लिसनर्स के लिए ये खास तौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है ना, महिलाएं अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अनदेखी करती हैं कि भाई हम ठीक है, मतलब पहले फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको वो ओवरलुक करती रहती हैं, और अक्सर इस ओवरलुक के चक्कर में उनको कई बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इस खास दिन के मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं हमारी खासतौर पर जो महिलाएं प्रोग्राम सुन रही हैं उनसे?
0: तो जो ओवेरियन कैंसर डे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बात आपने कही कि महिलाएं अनदेखी करती हैं कुछ लक्षण की और अपने बारे में कम सोचती हैं, ये इस पर कुछ ज्यादा फिट बैठता है,
1: जी
0: क्योंकि इसके थोड़े लक्षण बहुत क्लियर नहीं होते जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल के होते हैं जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है तो लोग चले ही जाते हैं दिखाने।
1: जी जी
0: लेकिन ओवरीज में अगर कोई ट्यूमर होता है अंडेदानी में, तो आमतौर पर जो लक्षण है वो इस तरह के होते हैं कि पेट फूलना, खाना ठीक से ना पचना, भूख कम लगना, तो जो कि एक बड़े जनरल टाइप के सिम्टम है, या एसिडिटी होना। कई बार मरीज इसके लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा रहे होते हैं
1: जी
0: और कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो इस पर मेनली मेरा कहना यही है कि अगर आपको लंबे समय तक अपच की शिकायत है, या भूख नहीं लग रही है, या पेट फूल रहा है, या पेट में कुछ भारी भारी पन सा बना रहता है, तो
1: जी
0: अगर ये नहीं ठीक हो रहा है आपके सिंपल एंटासिड और जो भी आप वैसी दवाइयां लेते हैं, कई बार घरेलू नुस्खों पे भी चल रहा होता है।
1: जी जी जी
0: कई बार मरीज सोचते हैं कि मेरे पास, स्पेशली पिछले साल भर के अंदर मैंने देखा है 3-4 मरीज ऐसे आए जो कह रहे हैं हमें लग रहा था वजन बढ़ रहा है और हम जिम जा रहे थे।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो जरूर एक बार सोचिए कि कहीं ये लक्षण किसी अंडेदानी के, मतलब जो यूट्रस या ओवरीज में बढ़ने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें और कोई लक्षण नहीं आएगा, सिर्फ पेट फूलना और अपच की शिकायत या भारीपन लगना यही होगा। तो अगर महीना भर भी कोई चीज ऐसे चल रही है और नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप उसके लिए जरूर डॉक्टर को दिखाएं, यही मेरा संदेश है। क्योंकि ये ओवेरियन कैंसर ऐसा है जो आमतौर पर हमारे पास स्टेज 3 या 4 में ही आता है, अर्ली स्टेज में कम पेशेंट आते हैं, क्योंकि वही एक तो ये ग्रो जल्दी करता है बहुत
1: जी
0: फास्ट और दूसरा मरीज भी थोड़ी देरी कर देते हैं, तो
1: जी
0: दोनों मिलाकर वो उनके लिए इलाज तो हो जाता है लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये
0: हाँ
1: ओवेरियन कैंसर की बात है, तो डॉक्टर साहब, लंबे समय से जिसको ये प्रॉब्लम रहा है डाइजेशन वगैरह के लिए, और अगर
0: जी
1: डाइजेशन की दवाओं से भी फायदा ना हो रहा, वही
0: जी
1: संपर्क करें गायनेकोलॉजिक को।
0: हाँ
1: या फिर
0: वो जरूर
1: स्कैनिंग
0: करें।
1: वगैरह के थ्रू भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है?

0: सकता है स्कैन करा के, जैसे होते हैं कि कहते हैं कि
1: हाँ, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा डेफिनेटली, बट कोई अल्ट्रासाउंड के लिए कहेंगे तभी पता चलेगा ना,
0: जी
1: अगर
0: जी
1: आप
0: जी
1: तो अल्ट्रासाउंड तो होना ही होता है, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर्स देख लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी की कराना है, मतलब
0: जी जी जी
1: किस लेवल की चीज है, कौन सी इमेजिंग करानी है, कोई ब्लड टेस्ट भी होते हैं
0: जी
1: जिनसे डायग्नोसिस में हमें आइडिया मिलता है कि किस टाइप का है, मतलब
0: जी जी
1: ओवरी ऐसा ऑर्गन है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो अलग अलग तरह के कैंसर उसमें या ट्यूमर डेवलप होते हैं,
0: जी
1: तो ब्लड टेस्ट से हमें भी काफी जानकारी मिलती है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से तो उसका साइज और उसकी कहाँ तक ग्रोथ है वो पता चलता है,
0: जी
1: लेकिन वो किस तरह का है, उसका व्यवहार कैसा है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वो ब्लड टेस्ट में कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं उनसे पता चलता है।
0: जी और ये कितने हद तक क्योर किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
1: तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, मतलब जब एक ही ओवरी इन्वॉल्व है और उसके ओवरी के बाहर नहीं फैला है,
0: जी
1: तो इसका 90% तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, जो कि काफी अच्छा रेस्पॉन्स रेट
0: जी
1: होता है।
0: जी
1: और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, जो मैंने बायोलॉजिकल कैरेक्टर,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: हाई
0: जी
1: ग्रेड टाइप होते हैं, एग्रेसिव टाइप के होते हैं, और कुछ लो ग्रेड टाइप के होते हैं, उस
0: जी
1: पर भी मैटर करता है, बट स्टेज पर भी करता है। तो
0: जी
1: अगर अर्ली स्टेज है तो 90% तक, और अगर एडवांस्ड हो जाती है तो फिर 50-60, मतलब बहुत एडवांस्ड हो तो 50% तक ही फिर सर्वाइवल रेट रहता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आपने आज खास दिन पर, यानी वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के आज दिन पर, जो खास तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे इग्नोर ना कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल दवाओं से नहीं सही हो सकते हैं, तो तुरंत आप एक सलाह लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मिलिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है। अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ होती है, अर्ली डिटेक्ट हो जाती है तो सही हो जाती है। और हम डॉक्टर निशा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं खास तौर पर इस चीज़ के बारे में अवेयर हों और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू वेरी मच, मुझे भी एक मौका मिला इंटरेक्ट करने के लिए, थैंक यू।
0: जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी तो ये थी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर निशा सिंह जी, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिनसे हमने बात की आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में।

0: है। एमके बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: बारह बजकर 44 मिनट हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, स्वयं सिद्धा शिल्पी आपके साथ है और हमने आज स्टार्टिंग में बात करी थी रोड सेफ्टी के बारे में और उसी के बारे में बात करी थी, लेकिन उस बीच में हमने बात कर ली आज के खास दिन के बारे में, आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में बातचीत करी ताकि हम आपको अवेयर कर सके। और साथ ही डॉक्टर निशा ने जैसा बताया कि मुश्किल था लेकिन इस फील्ड में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया। तो आप भी जो भी हमारी साथी महिला साथी है कुछ बनना चाहती, जो भी लड़कियां आजकल जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो केवल ये एक फील्ड नहीं है, किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल हौसला बरकरार रखिए और देखिए फिर कैसे मंजिल को आप छू लेंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे राधामणि अम्मा के बारे में, जो भारत की इकलौती ऐसी महिला ड्राइवर हैं जो कुछ भी ड्राइव कर सकती हैं। उन्होंने ड्राइविंग तब सीखी जब महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थीं, तब उन्होंने बड़े बड़े व्हीकल्स चलाना सीख लिया था और इससे उनकी हिम्मत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके जो मोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस होने का है, उन दर्ज है रिकॉर्ड के नाम पर कि सबसे ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस उनके नाम है, यानी 76 इयर्स ओल्ड अम्मा के नाम, राधामणि अम्मा जिन्हें ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं। और ये शुरुआत तब हुई थी ड्राइविंग की जब कुछ उनके ऊपर दिक्कतें आई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और फिर जिंदगी में क्योंकि आगे बढ़ना है, जीवन रुकता नहीं है और आपको कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना पड़ता है, और यही जज्बा समेटे राधामणि अम्मा ने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जिंदगी में एक मकाम हासिल किया। हम आज बस यहां पर ये कहेंगे, लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट फियर नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, और ये बात अम्मा पर बिल्कुल फिट बैठती है।

जी हाँ, हो गया है प्यार, और प्यार जब आपको अपने काम से हो जाता है तो फिर वो काम समझ लीजिए उसमें चार चांद लग जाते हैं, और वो काम कितना सक्सेसफुली होता है ये तो आपको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है। बहरहाल 12:50 हो गए हैं, प्रोग्राम लगभग वाइंड अप करने की ओर है, लेकिन चलते चलते हम बता देते हैं आपको योगिता रघुवंशी के बारे में, जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में जानी जाती हैं। और आज हम ड्राइवर्स की बात हमने इसलिए करी यहाँ पर जो फीमेल ड्राइवर्स हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को कहा जाता है कि भाई ये महिलाओं के लिए नहीं है, कहाँ वो ट्रक चलाएंगे, कहाँ वो जेसीबी चलाएंगे। लेकिन देखिए, अगर जज्बा है और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। योगिता अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लॉ में डिग्री हासिल की है उन्होंने, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को मोड़ दिया। और वो क्यों दिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने अपने घर के कुछ कामों के लिए किसी ड्राइवर को अपॉइंट किया, लेकिन जब लगातार उन्होंने देखा कि इसको रखने के बाद हमें नुकसान हो रहा है, यानी खुद वो मोर्चे पर नहीं है, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया और उसके बाद उन्हें लगातार नुकसान होता रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ये कमान खुद संभालती हूँ। और उसके बाद

उन्होंने ड्राइविंग में कदम रखा और उनका जो पहला सफर था वो भोपाल से अहमदाबाद तक का रहा। योगिता खुद कहते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया था कि बस जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, समाज को संदेश देना चाहती हूँ और खास तौर पर वो ये बताना चाहती थी कि बेटे और बेटी में कभी भी भेदभाव ना कीजिए, बेटियों को भी पूरा मौका दीजिए। और उनका कहना यह है कि हम बेटियां भी बेटों से किसी भी तरह से कम नहीं है।

से कम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात आज जो हमने मनीम्मा की करी या योगिता रघुवंशी की करी या फिर डॉक्टर निशा जी से हमने बात करी, आप देखिए सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कितनी स्टैब्लिश हैं, और जाहिर सी बात है कि उन तमाम महिलाओं के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है जो घर से निकलने से डरती हैं या फिर कुछ करने से पहले 10 बार सोचती हैं कि जिंदगी में कदम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जरूर आपका हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम आप तक ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ बातें पहुंचाएं, उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको इंस्पायर कर सकें, और अगर आप इंस्पायर होती हैं, लाइफ में कुछ कर लेती हैं, तो यकीन जानिए कि हम इस जो मिशन है उसमें सक्सेसफुल होते हैं। स्वयं सिद्धा प्रोग्राम ही हमारी सभी वर्किंग लेडीज को है, और साथ ही उन तमाम लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, वो भी इस प्रोग्राम को सुनकर इंस्पायर हो सकती हैं उन महिलाओं से।

12:56 हो गए, प्रोग्राम स्वयं सिद्धा को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पी को प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: नमस्कार। दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 9 मई 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 8 मई सन 2026 को 4:30 से यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारियां और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा शुक्रवार दिनांक 8 मई सन 2026 को 4:30।

से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-7200। श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी बरेली है, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तैयार हो जाइए। आपके मन के बीत, वो सुहाने गीत जो आपके मन बीत है, अनुरोध गीत में हम हाजिर हो चुके हैं आपके ढेरों पत्रों के साथ। तो आप कहाँ खोए हैं? अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ हाँ, इतना ज्यादा भी ना कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे। वैसे गीत और संगीत से किसको परेशानी, अगर आप वॉल्यूम जो लिमिटेड रखते हैं, यानी बैलेंस रखते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, आप सबके पत्र हमें मिल चुके हैं और हम शुरू करते हैं आज का अनुरोध गीत। मगर आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप भी दिल में ये तमन्ना रखते हैं कि काश हमारा नाम भी आए अनुरोध गीत में, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिनकोड 243001। आज का ये पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है विक्टोरिया नंबर 203 और इस गीत को गाया है किशोर कुमार साहब ने। मगर जिन्होंने पसंद किया है वो आप सब हैं। गांव लहोडडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन, जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके सभी साथी। और इसी गीत में आपको साथ लेते हैं मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा और इनके सभी साथी, गैंगटा काशीपुर धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सिद्दीक अली, साबिया और इनके सभी साथी। और हमारे ये जो साथी हैं वो सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुजताबा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनका पूरा कटनकर परिवार। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से ये गाना। लीजिए, सुनिए और सुनते रहिए।

0: देखा जी मैंने देखा।
1: आकाशवाणी बरेली FM 104 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर चल रहे हैं आपके नॉनस्टॉप अनुरोध गीत। फिल्म विदाई से ये गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किया है। और इस गीत को आप सबके नाम करते हैं, आप सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजबा के बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार, मौला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, फरीदी इकबाल, फरीदी सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये साथी हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा और इनके तमाम हमनवा। शामिल करते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा को। तो आप सबके नाम फिल्म विदाई से ये गाना।

0: आग है।
1: फिल्म आग और दाग का ये गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज, नूर देवासी के बोल हैं, एन दत्ता का म्यूजिक डायरेक्शन। और सुनना चाहते हैं आप सब, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत में हम आप सबको साथ लेते हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, आप हैं तिलक राज।

अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू मौर्य, एरोही और स्वाति मौर्य कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, आप वैष्णव कॉलोनी सनाबुद से हमें मैसेज भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, क्षमा कीजिए। और आप हैं वंदना शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, रीता देवी, विनोद, लक्ष्मी देवी और इनके घर के सभी लोग छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। तो आइए आप सबके नाम फिल्म आग और दाग से ये गीत।

FM 100.4 MHz पर CID 909 का ये गाना है। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, कमल बरोत और आशा भोसले की। शब्द रचना शेवन रिजवी की है और संगीत निर्देशन OP नैयर ने किया है। आप सबके नाम है ये गाना। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। हमारे ये साथी हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सोनिया कालका, जगमोहन और इनके सभी साथी मॉडल टाउन करनाल से। तो आज सबके नाम CID 909 से ये गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत। आपको कार्यक्रम में आनंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो अपनी सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा हमें, आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए। खैर बढ़ते हैं आगे, अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीहत से, महेंद्र कपूर, कमल बरूत और आशा भोसले की आवाजें। SH बिहारी साहब ने शब्द रचना की और धुन बनाई है OP नैयर साहब ने। इस गीत को पसंद करते हैं मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। इसी गीत में साथ लेते हैं आप सबको। आप हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमिता वर्मा, डॉक्टर समर राज आर्यन वर्मा, आरोही इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। आप हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से, और आप हैं ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, बबलू, विकास सक्सेना, करमीर गोडवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, दीपक वाल्मीक और इनके तमाम साथी। और आप सबके नाम है फिल्म नसीहत से ये गाना।

दोस्तों, ये आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं समय अनुरोध की। जी हाँ, वो सुरीले गाने जो आपका दिल बिना सुने न

तो आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना. फिल्म का नाम है, क्या नाम है? एक बार फिर. चलिए तो एक बार फिर फिल्म का यह गाना गाया है भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल ने. सुनने के मुंतजिर आप सब हैं. गंज डुंडवाना गणेशपुर से, क्षमा कीजिए, गंज डुंडवाना से हैं मुनव्वर लल्ला भाई, नसरीन मिर्जा, अरबाज खान, सहबाज, सूफिया, महबूबा, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, एजबी शेख, बादाम अली और किशमिश अली, सभी मेवा हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बरेली जंक्शन से आप हैं गरीब भाई, विक्की भारद्वाज और इनके तमाम तमाम तमाम हम नवा. तो आप सबके नाम फिल्म एक बार फिर से ये गाना.

अनुरोध गीत में दोस्तों, ये जो गीत अब आप सुनेंगे, फिल्म का नाम संग्राम है। साधना सरगम की आवाज, समीर के बोल, नदीम शवन का म्यूजिक डायरेक्शन। और इस गीत को पसंद करते हैं आप सब। कौन कौन आप हैं? ग्राम शंकरपुर, पोस्ट उसावा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से। सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, केशव, सोनी यादव, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव। इसी गीत में आपको साथ लेते हैं। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी। तो लीजिए सुनिए फिल्म संग्राम से ये गाना।

दोस्तों, आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। आप सबके नाम है ये गाना। आप हैं धनोरा बिटाली, तहसील नादुरा, बुलढाणा महाराष्ट्र से। भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, प्रेम, श्रेया, श्रुति और इनका पूरा परिवार। और आप हैं मछाह से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल और इनका पूरा परिवार। हमारे ये साथी हैं भोजीपुरा इटौआ केदारनाथ बरेली से मोहम्मद शिफान और इनके सभी साथी। और आप हैं अनिल कुमार राजपूत, ग्राम ढकिया केसरपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। तो आइए आप सबके नाम करते हैं लाल दुपट्टा मलमल का, फिल्म से ये गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर अनुरोध गीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम द किलर, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज, जलील शेरवानी के बोल, साजिद वाजिद का म्यूजिक डायरेक्शन और आप सबके नाम आज का ये आखिरी गाना। हमारे ये साथी हैं महबूब दुकानदार और इनके तमाम साथी कहाँ से हैं, जगह का नाम लिखा नहीं है आपने, है ना? फारबिसगंज बिहार से श्याम सुंदर महेश्वरी, पुष्पलता महेश्वरी और इनके सभी साथी, और आप हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देवगुप्ता और इनके सभी साथी उघेती कस्बा से, और डेरा बसी पंजाब से अकरम अंसारी, सानिया अंसारी, आयशा और इनके परिवारीजन। तो आप सबके नाम आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम द किलर्स।

तो दोस्तों अब तो चलना पड़ेगा, वक्त हुआ पूरा आज के अनुरोध गीत का। जी हाँ, किसी और मोड़ पर आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी सुरीली ख्वाहिशों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी बेबाक राय, प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें भेज सकते हैं। पत्र वही भेजने के लिए पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिनकोड 2430001। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें, इसी दुआ प्रार्थना और कामना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत गजेंद्र सिंह के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग की पहली कव्वाली आप सुनेंगे जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान की आवाज में।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मेहंदी हसन की गाई हुई ये गजल।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग, आपके अपने रेडियो चैनल 100.4 FM पर। और आइए अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई हुई ये गजल।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रसरंग की अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग, और आइए आप सुनवाते हैं कार्यक्रम का की अंतिम गजल। आवाज है हरिहरन की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंग, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: अपने आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप
0: जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकी पन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनोरी
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना। आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: सदाबहार नग में ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

खुशियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ आज कौन से सगी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गोरेगांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं?

0: इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कि हस्तकला कहाँ से लेती हैं, घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये
1: वहीं से करता।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि

0: जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और फ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है वो मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
1: जी।
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
1: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप

0: सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। अच्छा, आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे सखियों को?

0: जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में।
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आघात हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी वंसुरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: पालदाना का इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पर थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत?
1: रेडियो अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना

0: सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, दूसरे को कैसा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना है।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गुलाबी
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाब।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियाँ भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: श्रीलंका इतना मैं चाहूँ कि जो उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में हिट है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही।

0: रजनी से बोल रही हूँ।
1: एमपी भिंडी से। रजनी जी क्या करते हैं आप, गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
0: नहीं, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है पुराने गीत
1: जी,
0: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
1: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
0: विविध भारती का एक गीत मालिका है
1: जी,
0: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
1: जी। हाँ
0: मैं, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई
1: जी।
0: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: और सखी सहेली सुनती रही मैं, सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
1: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
1: तो आशा जी को याद करते हुए

0: सहेली
1: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
0: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
1: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
0: जी बहुत धन्यवाद।
1: तो क्या करती है झनकार?

0: इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ महसूस करो,

0: अच्छा आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो,
0: सीख रही हूँ
1: अपनी। हाँ।
0: अच्छा बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्य में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात
1: हम कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तक तक है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है?
1: वो जैसे बोलती थी थाई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अपूर्णता है थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल
1: पर
0: सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उसकी योग्य हूँ।
0: देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ पे शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी।
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा

0: Tick da dick dick tay, tick da dick dick tay, da tay, sat sat tay, sat sat tay, sat sat tay. इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमत है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में दो एक साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
1: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मूल जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झंकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं वो एक स्वामी विट्ठल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छी
1: जी,
0: लगी थी।
1: जी, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ,
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही है सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गाँव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में इस
1: अच्छा था और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी
1: हाँ
0: है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत, खेत पे ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है?

0: आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: है ना, है भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: भैंस
0: है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो

0: इन दिनों गर्मी भी बहुत है तो उनके भी चारा देने का
1: तो उनको खाया की व्यवस्था भी की है ना
0: जी। अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके आप खुद का तो ध्यान रख ही रही है, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके,
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं
0: जी। तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वहाँ पे घर रहे इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है, तो

0: सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैं अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना,
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सच्ची सहेली सुनते हैं। दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। वो
0: बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। और कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हमारे श्रोता फजलुद्दीन भाई को।
1: बात कर रहा हूँ, 1993 से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और जो भी प्रोग्राम आते हैं सभी सुनता हूँ। और जितने गांव के भी लेटर डांटते हैं सब मुझसे पूछते हैं, सब मेरे पास आते हैं, सबको एड्रेस देता हूँ, सब लेटर डांटते हैं। और मैं कहीं भी जाऊँ मगर आकाशवाणी से टाइम जरूर निकालता हूँ। और जब मैं रिक्शा चलाता था तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, रात में मुझे टाइम नहीं मिलता था तो रात में रिक्शा चलाता था तो दिन में अपने प्रोग्राम सुनता था। एक महीने में लगभग मेरे 200 लेटर आते हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और ये चल रहा है आपका, आपकी आकाशवाणी के साथ, ये भी मुझे अच्छा लगता है, जितने सब अच्छे लगते हैं। पहले बजाता था मैं रामपुर, उसमें सुनता था विजय भारती की 40 साल की उम्र थी तभी से विजय भारती वाले मैंने सुनी है। अब जो है आकाशवाणी रैली करता है विजय भारती, वो भी सुनता हूँ और अपना आकाशवाणी सुनता हूँ। जितने प्रोग्राम चलते हैं सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं वोलन सर लोग। अभी से जाए खूब भैया लेटर डालो, खूब सुनो, इसलिए मैंने आकाशवाणी से ज़्यादा मोहब्बत है मुझे, मैं रोज़ ही सुनता हूँ। और अब भी मैं दिन भर घर पर रहता हूँ, दिन भर आकाशवाणी सुनता हूँ। बड़ा बड़ा परेशानी रही लेकिन मैंने आकाशवाणी का FM का साथ नहीं छोड़ा और सबसे बढ़िया है, सब बहुत बड़ा साथ है FM से, बहुत बड़ी सुकून देता है। कहीं भी चले जाओ टाइम पास करना हो तो आकाशवाणी से जुड़ जाओ, पूरा टाइम पास होएगा। और सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, सब में बज रही बरेली FM, सबसे बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो।
0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति चाहे वह किसी भी नृजातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.government.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.government.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

0: स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी श्रोताओं का मैं अमृता बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम आधारित है एक महत्वपूर्ण विषय पर, और आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे श्रोताओं की कॉल की ओर और देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है। हेलो।
1: हाँ जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: दिलशाद बनकिया से।
0: दिलशाद जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का विषय है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ये है ना, ध्यान रखना चाहिए खुद का, सामने वाला चला रहा है या बाइक चला रहा है, मगर ये हमारा भी काम बनता है कि हम वो समझ के चले देखभाल के।
0: बिल्कुल।
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे में भी बाइक चलाते हैं, राइड चलाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पर जब चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो हम अपने सारे जो भी ट्रैफिक के नियम होते हैं उनका भी पालन करें और खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सड़क पे चलें।
1: जी।
0: तो जी दिलशाद जी, और आज आपकी कॉल लगी है, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? ठीक है दिलशाद जी, हम भेज रहे हैं गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं? नमस्ते,
1: शरद सक्सेना बोल रहा हूँ। शरद सक्सेना बोल रहा हूँ, बाकी की छापती बरेली से।
0: शरद सक्सेना जी, कार्यक्रम आपके बाद आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे?
1: हाँ जी मैम, हम खुद जिम्मेदार है दुर्घटनाओं के, क्योंकि हम लोग काफी लापरवाही से तो गाड़ी चलाते हैं, जब बाइक हो कार हो, और कुछ लोग तो शराब पी के भी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इससे। और रोड पार करते हैं तब भी दोनों तरफ देखते नहीं है,
0: जी।
1: पार करते समय रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो काफी हद तक तो हम ही लोग जिम्मेदार है एक्सीडेंट के, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शरद, जब आप सड़क पर जाते हैं तो क्या आप सारी सड़क के जो रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनका पालन करते हैं?
1: मैम बिल्कुल सही, हम लोग नहीं करते, हम खुद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी चूक होती है, जिस वजह से हमारे एक्सीडेंट होते हैं।
0: लेकिन शरद ये बहुत गलत बात है, आपको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और आपके घर परिवार के या दोस्त जो भी हैं आपके, उनको भी कहना चाहिए कि ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करें और खुद सावधानी और सुरक्षा के साथ जब भी घर से बाहर निकलें तो निकलें, जिससे आप दुर्घटना से बचे रह सकें।
1: हाँ जी मैम, ये बात ठीक है।
0: तो शरद जी, आज आपकी जी बिल्कुल कॉल लगी है, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज कोई फिल्म बहुत दर्द भरा, लेकिन
0: ठीक है शरद जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक दर्द भरा गीत आपके लिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी। हेलो आकाशवाणी
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं हमारे?
1: जी कस्बा सीजगढ़ से गुड्डू इदरीसी बोल रहे हैं।
0: गुड्डू इदरीसी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो विषय है वो है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे?
1: सबसे पहले तो कभी भी नशेबू गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज ये, सामने वाला के बस के खुद को जलाइए, सामने वाला मत देगी कैसा चल रहा है, अपनी साइड पे चलने से
0: बिल्कुल
1: आपकी तो सर किस्मत रहेगी।
0: बिल्कुल। तो गुड्डू इदरीसी जी, जब आप सड़क पर चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप अपने अगर बात की जाए तो किस किस सावधानी का ध्यान रखते हैं कि कैसे चलना चाहिए सड़क पे?
1: देखिए, मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए, नहीं नशे में चलाना चाहिए, नहीं रॉन्ग साइड पे चलाना चाहिए, अपने साइड पे ही चलाना चाहिए।
0: तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम खुद अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करें, तो हम दुर्घटनाओं से खुद भी बचे रहेंगे और दूसरे भी।
1: जी
0: ठीक है गुड्डू जी, आज आपकी कॉल लगी है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: जी हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम सकरा कला से।
0: बंटू भाई, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है बहुत बहुत। और आज का हमारा विषय है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे? क्या कहना चाहेंगे आप
1: इसके विषय में? तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि मतलब सड़क पर चले तो पहले सड़क पर चलने के नियम जो है वो खुद अपने आप लेकर के चले।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इसमें नियम लेकर के चलेंगे तो दुर्घटना नाके बराबर होगी
0: जी।
1: और जब हम ठीक चलेंगे तो अगले जो सामने वाला है वो भी बचेगा और हम भी मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं
0: जी। सही सलामत आप भी अपने घर परिवार या जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं, अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो। अच्छा बंटू भाई, जब आप सड़क पे जाते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी रहती है?
1: हमारी तो गाड़ी मतलब 30 से 35 की स्पीड में चलती है।
0: बिल्कुल, मतलब आप बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, आराम आराम से सफर का आनंद लेते हैं ना?
1: जी जी, सफर का जल्द से जल्द मतलब जितनी जल्द से जल्द करेंगे तो उसमें दुर्घटना हो सकती है, आराम से चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा भी जाता है कि दुर्घटना से देर भली, सफर का आनंद लीजिए, मंजिल तो आ ही जाएगी। तो आज बंटू भाई आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी गाना सुनवा दीजिए, चार समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई।
0: ठीक है बंटू भाई, हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: से शमशाद अली बोल रहे हैं।
0: शमशाद अली जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है, सड़क पर दुर्घटना के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे?
1: हाँ, खुद होते हैं जी मैडम।
0: किस तरह से होते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: हाँ जी, ऐसे जा रहे हैं, कानों पे मोबाइल लगा हुआ, गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं अपना भी, तो खुद हादसे हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रैफिक के नियमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है, खासतौर पर अगर युवाओं की बात करें तो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां भगाते हैं और कई बार नशे में भी गाड़ियां चलाते हैं।
1: हाँ, उनको उनको ध्यान रखना चाहिए, नशे में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी, अपने हिसाब से चलाना चाहिए गाड़ी, बड़ी हो या छोटी गाड़ी हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी, अगर हम पहले खुद में सुधार लाएंगे तभी सामने वाले भी सुधर जाएंगे। तो आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुना लीजिए। मेरा नाम जोकर का है। ए भाई, जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, गाना इसी विषय पे है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और हमें देखकर ही घर से चलना चाहिए। जरूर हमारे श्रोता अगली बार जब घर से पैर बाहर निकालेंगे तो जरूर सोचेंगे कि हम खुद भी ध्यान रखें, सभी नियमों का पालन करें, सुरक्षित जाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद जी, और हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे।

या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: हेलो
1: जी हेलो।
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैडम, मैं एकता क्लब सिंदौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ।
0: इमरान शेख जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। और हमारा जो
1: बहुत
0: आज
1: बहुत
0: का
1: शुक्रिया मैम।
0: जी हमारा जो आज का विषय है वो है सड़क पर दुर्घटना के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या दूसरे? क्या कहना चाहेंगे सर?
1: बिल्कुल मैम, मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते और हेलमेट का यूज नहीं करते, अगर हम इन सब चीजों का सेफ्टी का यूज करेंगे तो हम जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनसे आसानी से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि दूसरों में सुधार लाने से पहले हमें खुद सारे नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इमरान जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैम, एक फिल्म का नाम है हम दोनों और गाने के बोल हैं ऐसे ना जाओ छोड़कर अभी तो दिल भरा नहीं।
0: ठीक है इमरान जी, हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवनगर चंपतपुर तहसील औला जिला बरेली से।
0: सद्दाम अली जी, स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है सड़क पर दुर्घटनाओं के असल जिम्मेदार कौन, हम खुद या फिर दूसरे? क्या कहना चाहेंगे सद्दाम जी आप?
1: मैं यही कहना चाहूँगा मैम, जो भी व्यक्ति है अगर सड़क पर चल रहा है तो वो जिम्मेदारी के साथ चले और नियम के साथ चले, नियमों का पालन करे, नियम ना तोड़े, और जो है परिवहन विभाग द्वारा जो हमारे नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चले, उनके नियम की अवहेलना ना करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे नियम हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जब भी हम यात्रा करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आवश्यकता है उन नियमों पर विचार करने की, उनके हिसाब से चलने की, और सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका जब हम पालन करेंगे तो हम भी खुद भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो सद्दाम जी, आज कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है फुटपाथ और गीत के बोल हैं जरा देख मेरा दीवानापन।
0: ठीक है सद्दाम जी, हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

104.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं फेसबुक पेज पर भेजे हुए आपके कमेंट्स की ओर। ये कमेंट है सादुलशहर राजस्थान से लिखने वाले हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सड़क पर हमेशा सावधानी पूर्वक ही चलना चाहिए। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है लापरवाही। यह लापरवाही जो है वो दोनों तरफ से भी हो सकती है, हमारी तरफ से भी हो सकती है और सामने वाले की तरफ से भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा ही सतर्क रहें, सावधान रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा करते समय सड़क पर हमें कभी भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान कई बार मोबाइल की तरफ होता है, इसलिए यह एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। चाहे हम किसी वाहन में हो, वाइट पर हो या फिर पैदल ही क्यों ना हो, बाइक पर हो, शायद उन्होंने बाइक लिखनी चाहिए लेकिन वाइट लिख गया है, तो बाइक पे हो या फिर पैदल हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ऐसे में अक्सर दुर्घटना हो जाती है। साथ ही साथ लिखा है कि सावधानी और सुरक्षित यात्रा करनी चाहिए और मोबाइल से अगर बात करनी हो तो साइड में गाड़ी रोक कर ही बात करनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक अनमोल जीवन चला जा सकता है जो दोबारा नहीं मिल सकता। छोटा सा संदेश, अपना वाहन हमेशा धीमी गति से चलाएं और ओवरटेक कभी ना करें, क्योंकि ओवरटेक से हमेशा दुर्घटना होती है। आइए अब चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। ये लिखते हैं कि मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटना के 90% जिम्मेदार हम खुद होते हैं, बाकी 10% है वो अन्य लोग होते हैं। सड़क पर मेन हॉल का खुला होना, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अन्य लोग। हम सड़क पर चलते समय लापरवाही बरतते हैं, सड़क पर चलेंगे

तो फुटपाथ पर नहीं बल्कि आधी सड़क घेर कर पैदल चलेंगे। अभी हाल ही में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वह अपनी साइड में चल रहा था, रॉन्ग साइड से आकर किसी ने अपनी बाइक से उसको टक्कर मार दी। वह लड़का ओवरटेक कर रहा था, सामने से ट्रक को आते देखा और देख वह राइट साइड रॉन्ग साइड में चला गया, नतीजतन एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई की बड़ी जान बच गई। वो कहते हैं कि इसीलिए हमें कभी भी रॉन्ग साइड पर नहीं चलना चाहिए और ट्रक वगैरह की चपेट में आने से बचना चाहिए, हमेशा अपनी साइड में चलें। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है विष्णु मस्कीन का, साथ में है ऋतिक मस्कीन व इनके परिवार के सभी सदस्य, पता है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र। ये लिखते हैं कि सड़क पर होने वाली हर दुर्घटना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी लापरवाही छुपी होती है। असल जिम्मेदारी सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ी ही नहीं बल्कि वह सोच भी है जो कहती है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट को नजरअंदाज करना, जल्दी पहुंचने की होड़, ट्रैफिक नियमों को मजाक समझना, ये वो गलतियां हैं जो किसी का पूरा घर उजाड़ देती हैं। दुर्घटना होने के बाद लोग कहते हैं कि बस एक पल की गलती थी, लेकिन सच बात ये है कि वही एक पल की गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। सड़क पर समझदारी सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो घर पर आपके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, गाड़ी की रफ्तार कुछ मिनट बचा सकती है लेकिन सावधानी पूरी जिंदगी बचा सकती है। अब चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है मौलागढ़ नई मस्जिद भोजीपुरा, मस्जिद भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी तराना अंसारी का। ये लिखते हैं कि सड़क पर दुर्घटना के शिकार हम खुद ही होते हैं, हम सभी होते हैं, इधर उधर देखते नहीं हैं, बस चले जाते हैं। सामने वाले को क्या पता कि हम किस गली से निकल रहे हैं, इसलिए हम खुद ही देख कर चलेंगे तभी सुरक्षित पहुंचेंगे। इसी विषय पर एक और कमेंट हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, इनका पता है नाज रेडियो क्लब करेली से, निसार अहमद अंसारी। लिखते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर डालना मुश्किल है क्योंकि इसमें कई फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना या ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल ध्यान भटकाने की बड़ी वजह होती है। सड़क की खराब हालत, गड्ढे या यह खराब डिजाइन, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये खतरनाक कारणों की वजह से कई बार एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो जाती है। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चालक पैदल यात्री और प्रशासन सभी की भूमिका है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के बचे हुए अगले कमेंट्स की ओर। ये अगला कमेंट है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर। लिखते हैं कि दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं अगर हमारी गलती होती है। अक्सर हमारी गलती होती है, जैसे कि फोन चलाना, सिग्नल तोड़ना, जल्दबाजी करना, कभी दूसरों की लापरवाही, नशे में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, गलत ओवरटेक करना। सड़क सबकी सांझी है, यह नियम मानकर सतर्क रहकर हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित और सावधान रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सारी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। 100% किसी एक का दोष नहीं हो सकता। इसी विषय पर अगला जो कमेंट है वो हमें भेजा है कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये लिखते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका जिम्मेदार हम खुद ही हैं, कोई और नहीं। अक्सर देखने में आता है रेलवे फाटक पर बंद होता है, जब बंद होता है फिर भी लोग पंखे के नीचे से गाड़ी निकालना चालू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से हम 5 मिनट पहले निकलें ताकि जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी के चक्कर में कई बार हम लोग अपनी जिंदगी के साथ हार तो बैठते हैं। और एक बात और सामने आती है, जब हम बाइक पर जाते हैं तो कुछ लोग एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं और आवाज़ बहुत तेज होती है, जिसके पीछे से आने वाली जो वाहन होते हैं उनकी गाड़ी नहीं, उनको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती और संपर्क नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम जो हैं वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मेरा सभी से सावधानी से चलने का और सुरक्षित रहने का एक इन्होंने अपील की है, तो आप सभी भी सुरक्षित रहिए। कार्यक्रम का अंतिम कमेंट है वो हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद से। लिखने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी। लिखते हैं कि सड़क पर जो दुर्घटना होती है वो हमारी ही लापरवाही से होती है। कई बार हम फोन पर इतने बिजी हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। कभी गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार से चलाते हैं, अगर कोई व्यक्ति सामने से आ जाए तो गाड़ी कंट्रोल ना होने की वजह से दुर्घटना हो जाती है।

हमें चाहिए गाड़ी धीमी गति से चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ दुर्घटना से देर भली। बिल्कुल सही कहा आप सभी श्रोताओं ने कि दुर्घटना से देर भली जीवन एक ही बार मिलता है, तो अपने अनमोल जीवन को सुरक्षित रखें और इन सभी नियमों का पालन करें।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके बाद आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में शाम 5:30 पर आप आनंद लेंगे आपके अपने शो जिसका नाम है लकी 3 का कला में शायर। ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:45 पर। कार्यक्रम में आज के प्रतिभागी होंगे अभिषेक अग्निहोत्री और कौशल सक्सेना। युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और नजरानाएं शाम भी। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका। साथ ही सुनिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में भी। साथ ही आपको सुनवाएंगे वार्ता संदीप अवस्थी से। वार्ता का विषय रहेगा किसानों की आय कैसे बढ़ाएं। होंगे लोकगीत भी। कृषि पाठशाला, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर हिमानी धंजे से, मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत। वार्ता का विषय रहेगा पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग, जानकारी एवं बचाव। रेडियो हेल्पलाइन, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर। कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। और रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से। श्रोता, ये तो थी हमारी आज की शेष सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी कल सुबह 8:15 पर। मैं कल प्रातः आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली में ओबी फोनो, बरेली की अन्य खबरें अखबार से। लोकगीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:45 से। 9 बजे से आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, क्षमा कीजिएगा मुंबई केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। आकाशवाणी के दीवाने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद का, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। सब रंग, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 11 बजे से। लोकगीतों का कार्यक्रम एक बार पुनः आप सभी सुनेंगे, समय रहेगा सुबह 11:30 का। दोपहर 12 बजे से आपको जोड़ेंगे FM रेनबो के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत को आप सभी सुनेंगे कल दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम जनमंच का, जिसमें विषय रहेगा जीवन एक रंगमंच है। प्रतिभागी होंगे श्री स्पर्श पटेल, श्री अर्जुन सैनी, संचालन रहेगा मिथिलेश श्रीवास्तव का। आकाशवाणी के दीवाने, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 4 बजे से। शाम 4:05 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। भजन संध्या, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:05 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली आप सुनेंगे शाम 5:30 से। 6 बजे का समय रहेगा युवा साथियों के प्रिय कार्यक्रम युववाणी का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का प्रिय कार्यक्रम किसान वाणी। ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से, जिसमें चर्चा होगी संतुलित आहार के फायदे। साथ ही सुनेगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोकगीत भी। 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का। और रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की शेष और कल की सभा।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम का पहला भजन आप सुन रहे हैं हरिहरन के स्वर में।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला भजन हरिओम सरन और नंदिनी सरन के स्वर में।

भजन संध्या आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगी बाबला मेहता के स्वर में ये भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
1: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली का संदेश सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बरेली श्री प्रदीप कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त वाहे न्यायालयों एवं समस्त विभागों में,
2: जिसमें शमनीय वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, चालान से संबंधित समस्त मामले एवं अन्य मामले आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लकी 3। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम लकी 3 में मैं अमृता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कार्यक्रम आधारित होता है आपके भेजे हुए 3 श्रोताओं के पत्रों पर। और आज के हमारे पहले लकी श्रोता हैं छाबनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से, रामप्रसाद शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए जानते हैं कि कौन सा गीत इन्हें पसंद है और क्यों पसंद है। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो मन को छू जाती हैं। एक आई थी महबूब की मेहंदी, अदाकारा लीना चंद्रकर और राजेश खन्ना, कमाल की अदाकारी, उसमें गाने और जो भी संचालन था फिल्म का वो इनको बेहद पसंद आया। पहले मैंने कई बार देखी, टीवी पे आती थी तब देखता था। लता जी की मधुर आवाज, सिनेमा हॉल पर जब ये गाना शुरू होता था तब लोग पर्दे के पास जाकर पैसे लुटा देते थे। लीना चंद्रकर की अदाकारी ने कमाल कर दिया और इसीलिए ये इसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी 3। और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं हमारे दूसरे लकी श्रोता के पत्र की ओर। कौन है, इन्होंने क्या लिखा है और कौन सा गीत सुनना चाहा है? मशरूर खान ककराला बदायूं से, और ये लिखते हैं कि इनको जब मैं किसी दरगाह शरीफ में अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगता हूँ तो मुझे हमेशा इस गीत की याद आ जाती है, और इसीलिए प्लीज ये गीत मुझे जरूर सुनवाएं। फिल्म का नाम है लैला मजनू, गीत है तेरे दर पे आए हैं। तो मशहूर खान जी, हम सुनवा रहे हैं आपको आपके पसंद का गीत, और सच में अल्लाह के दरबार में जब भी हम जाते हैं तो इस तरह के गीत हमें अपने आप ही याद आ जाते हैं, क्योंकि ये जुड़े होते हैं ऊपर वाले की इबादत से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे आखिरी लकी श्रोता का। इनका नाम है पहले आइए सुनते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। ये लिखते हैं कि सिकंदर आजम का एक गीत है, फिल्म सिकंदर आजम का एक गीत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये गीत इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहते हैं कि जब भी ये गीत ये सुनते हैं तो इनको खास तौर पर जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और उसके अनुसार जो मातृभूमि पर गीत गाए जाते हैं वो इनको बेहद पसंद है। इनका नाम है ओपी सागर, ग्राम गहवरा, दिवना मीरगंज, बरेली, यूपी से। और आइए अब आपके को इतना खूबसूरत गीत पसंद है जो देशभक्ति से भी जुड़ा है और मौसम से ऋतु से भी परिवर्तित परिवर्तन जो होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लकी थ्री। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कलामे शायर।
1: मित्रों, मैं अभिषेक कुमार, मेरा पेन नेम अभिषेक अग्नोत्री है। मैं इसी से अपना साहित्य की रचना करता हूँ। अपनी बात शुरू करता हूँ, एक गजल पेश करता हूँ कि मतला है, क्या सुनाऊं मसले तकदीर के, क्या सुनाऊं मसले तकदीर के, फूल निकले सूल की तासीर के।
2: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: क्या सुनाऊं मसले तकदीर के, फूल निकले सूल की तासीर के, मान लूं अपनी पराजय क्यों भला, मान लूं अपनी पराजय क्यों भला, बाढ़ जब तक शेष है तोड़ीर के।
2: क्या बात है,
1: बाढ़ जब तक शेष है तोड़ीर के। और ये शेर देखेगा कि बस उदासी से निहारा था उसे, बस उदासी से निहारा था उसे, रंग सारे उड़ गए तस्वीर के।
2: वाह वाह वाह,
1: रंग सारे उड़ गए तस्वीर के,
2: उड़ गए तस्वीर के।
1: बहुत धन्यवाद। है कलम की धार काफी आजकल, है कलम की धार काफी आजकल, वो जमाने लत गए शमशीर के, वो जमाने लत गए शमशीर के। और मान लूं कैसे फकीरी आपकी, मान लूं कैसे फकीरी आपकी, आप तो हैं लालची जागीर के।
2: क्या कहने भाई, वाह,
1: आप तो हैं लालची जागीर के। बहुत धन्यवाद। और आपको विश्वास हो चाहे न हो, आपको विश्वास हो
2: चाहे
1: न हो, हम दिखा सकते नहीं दिल चीर के।
2: क्या कहने, वाह वाह,
1: हम दिखा सकते नहीं दिल चीर के। और अंतिम शेर है इस गजल का कि अब रिहाई की गुजारिश क्या करें, अब रिहाई की गुजारिश क्या करें, पांव आदि हो गए जंजीर के।
2: क्या कहने,
1: पांव आदि हो गए जंजीर के।
2: वाह वाह।
1: और इसी क्रम में एक और गजल मैं पेश करता हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि दांव लगा दी है मैंने तन्हाई तक, दांव लगा दी है मैंने तन्हाई तक, कोई तो पहुंचे दिल की गहराई तक।
2: क्या कहने, वाह,
1: कोई तो पहुंचे दिल की गहराई तक, एक कफस है दुनिया जिसमें कैद सभी, एक कफस है दुनिया जिसमें कैद सभी, जीना ही पड़ता है यहाँ रिहाई तक।
2: क्या कहने, वाह वाह वाह,
1: जीना ही पड़ता है यहाँ रिहाई तक, कर्ज सभी लेकर सांसों का आए हैं, कर्ज सभी लेकर आए हैं सांसों का, चुकता करना है जो पाई पाई तक।
2: क्या कहने, वाह,
1: चुकता करना है जो पाई पाई तक, बाद में किसने देखा कितने बांध रहे, बाद में किसने देखा
2: कितने
1: बांध रहे, खुद को थामे बैठा रहा विदाई तक।
2: क्या बात है, वाह वाह,
1: खुद को थामे बैठा रहा विदाई तक। बहुत धन्यवाद। दौलत ही एक चीज है ऐसी दुनिया में, दौलत ही एक चीज है ऐसी दुनिया में, जिसकी खातिर लड़ते भाई भाई तक,
2: वा, वा, वा।
1: जिसकी खातिर लड़ते भाई भाई, भाई तक, कहने भर को ही रिश्ते रह जाते हैं, कहने भर को ही रिश्ते रह जाते हैं, बट

0: जाती है जब घर की अंगनाई तक,
1: क्या बात है, वाह,
0: बट जाती है जब घर की अंगनाई तक। और यह एक गजल और पेश करता हूँ, आपका ध्यान चाहेंगे कि किससे आए हो गुफ्तगु करके, किससे आए हो गुफ्तगु करके, बात करने लगे हो तू करके,
1: क्या बात है,
0: किससे आए हो गुफ्तगु करके, बात करने लगे हो तू करके, तुम तो मशहूर हो गए होगे, तुम तो मशहूर हो गए होगे, मेरी रुसवाई चार सू करके,
1: क्या कहने है, वा, वा, वा।
0: तुम तो मशहूर हो गए होगे, मेरी रुसवाई चार सू करके, अब तो दिन रात एक करना है, अब तो दिन रात एक करना है, फंस गया हूं मैं आरजू करके, फंस गया हूं मैं आरजू करके, हो गई मैली प्रेम की मूरत, हो गई मैली प्रेम की मूरत, इतना देखा गया है छू करके,
1: क्या बात है,
0: हो गई मैली प्रेम की मूरत, बहुत धन्यवाद, हो गई मैली प्रेम की मूरत, इतना देखा गया है छू करके, ये कढ़ाई जो पैरहन पर है, ये कढ़ाई जो पैरहन पर है, असल में है बनी रफू करके,
1: वाह,
0: असल में है बनी
1: रफू करके,
0: और खुद से पूछूंगा खुद के बारे में, खुद के बारे में, खुद को रखना है रूबरू करके,
1: क्या बात है, वाह,
0: खुद को रखना है रूबरू करके। और अंतिम शेर है कि मन को मालिक नहीं बनाना था, मन को मालिक नहीं बनाना था, मन को रखना था पालतू करके,
1: क्या बात है,
0: मन को मालिक नहीं बनाना था,
1: मन को रखना था
0: पालतू करके, मन को उसको रखना था पालतू करके, उसको रखना था पालतू करके।
1: बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार सक्सेना, जिसे आप कुमार कौशल के नाम से जानते होंगे, मैं एक गजल के कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा। कि मेरी बकबक याद तुम्हें तब आएगी, मेरी बकबक याद तुम्हें तब आएगी, जब मेरी खामोशी शोर मचाएगी,
0: क्या कहने,
1: और मेरा हाथ पकड़ ले दूर ना जाने दे, मेरा हाथ पकड़ ले दूर ना जाने दे, दूर तलक आवाज नहीं जा पाएगी,
0: वाह वाह वाह।
1: और तेरे नाम का पासवर्ड है सांसों में,
0: आय हाय,
1: तेरे नाम का पासवर्ड है सांसों में, भूला तो जान आफत में पड़ जाएगी,
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह,
1: भूला तो जान आफत में पड़ जाएगी। और कान पकड़ता हूँ तुझको बेरंग कहा, कान पकड़ता हूँ तुझको बेरंग कहा, बस कर दुनिया कितने रंग दिखाएगी,
0: क्या बात है, क्या बात,
1: बस कर दुनिया कितने रंग दिखाएगी। और याद रखो, याद रखो तुम आज तुम्हारी खामोशी,
0: आए,
1: याद रखो तुम आज तुम्हारी खामोशी, अगली नस्लों को गूंगा कर जाएगी,
0: क्या शानदार, वाह
1: वाह, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शानदार।
1: एक गजल के कुछ शेर और देखें कि पूरा 100 का नोट गया बच्चे को चीज दिलाने में, पूरा 100 का नोट गया बच्चे को चीज दिलाने में, मेरे वक्त में 4 टॉफियां आती थी आठाने में,
0: क्या कहने, वाह वाह वाह।
1: और बच्चे डोरेमोन देखते हम भी रील बनाते हैं, बच्चे डोरेमोन देखते हम भी रील बनाते हैं, राजा रानी वाले किस्से भी थे एक जमाने में,
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: राजा रानी वाले किस्से भी थे एक जमाने में, एक लड़की ने दिल वाला स्टिकर भेजा है मुझको,
0: आए हाय,
1: एक लड़की ने दिल वाला स्टिकर भेजा है मुझको, सो लगा हुआ है पागल दिल स्टिकर धड़काने में, बहुत शुक्रिया, सो लगा हुआ है पागल दिल स्टिकर धड़काने में, साथ में वक्त बिता लेते, शेर सुनिएगा, कि साथ में वक्त बिता लेते तो यादें भी ला सकते थे,
0: यादें भी ला सकते थे,
1: साथ में वक्त बिता लेते तो यादें भी ला सकते थे, सारा वक्त गवाया हमने तस्वीरें खिंचवाने में,
0: क्या
1: सारा वक्त गवाया हमने तस्वीरें खिंचवाने में, धीरे धीरे दीवारों से 4 कैलेंडर बदल गए,

0: धीरे धीरे दीवारों से चार कैलेंडर बदल गए, दिल को कितना वक्त लगेगा एक तस्वीर हटाने में।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक गजल के कुछ शेर और देख लें कि हर मुश्किल में साथ निभा सकती हो क्या, हर मुश्किल में साथ निभा सकती हो क्या, तुम मेरा सरनेम लगा सकती हो क्या।
1: क्या बात, क्या अंदाज़ है,
0: बहुत शुक्रिया। हर मुश्किल में साथ निभा सकती हो क्या, तुम मेरा सरनेम लगा सकती हो क्या, मुझको तुमसे मिलना है, तुमसे समझी, मुझको तुमसे मिलना है, तुमसे समझी, जिस्म कहीं पर रख कर आ सकती हो क्या।
1: क्या शेर हुआ, वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। जिस्म कहीं पर रख कर आ सकती हो क्या, मुझको देर अगर हो जाए ऑफिस में,

0: मुझको देर अगर हो जाए ऑफिस में, मुझको देर अगर हो जाए ऑफिस
1: ऑफिस
0: में,
1: में
0: ट्यूशन से बच्चे घर ला सकती हो क्या?
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बहुत शुक्रिया। ट्यूशन से बच्चे घर ला सकती हो क्या? और देखें कि टूटी हर एक चीज कहाँ जुड़ सकती है,
1: कहाँ जुड़ सकती है,
0: टूटी हर एक चीज कहाँ जुड़ सकती
1: कहाँ जुड़
0: है, दिल पर फेविकोल लगा सकती हो क्या?
1: क्या बात है, क्या बात
0: बहुत शुक्रिया। दिल
1: है,
0: पर फेविकोल लगा सकती हो
1: लगा
0: क्या,
1: सकती
0: और
1: है।
0: बात बात पर मुंह तो खूब बनाती हो,
1: मुंह तो खूब बनाती हो।
0: बात बात पर मुंह तो खूब बनाती हो, बिगड़ी कोई बात
1: बात
0: बना
1: बना
0: सकती
1: सकती
0: हो
1: हो क्या,
0: क्या, हर मुश्किल में साथ निभा सकती हो क्या,
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: मेरा सरनेम लगा सकती हो क्या। और एक मतलब शेर देख लें जो आप लोगों ने सुना भी होगा, कि मत सोचो तोहफा कोई
1: महंगा
0: महंगा
1: देगा।
0: देगा, मत सोचो तोहफा कोई महंगा देगा, देने को क्या पास है इसके क्या
1: क्या देगा।
0: देगा, देखो तुमने इश्क किया है शायर से, देखो तुमने इश्क किया है शायर से, शेर कहेगा जेवर थोड़ी ला देगा।
1: वाह वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह, बहुत
0: शुक्रिया,
1: शानदार,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: शानदार।
0: शुक्रिया। और एक मतला शेर और देख लें, कि तुम्हारी याद से करना गुजारा, तुम्हारी याद से करना गुजारा, यही एक काम रहता है हमारा, तुम्हारी
1: याद
0: याद
1: से
0: से
1: करना
0: करना
1: गुजारा
0: गुजारा, यही एक काम रहता है हमारा,
1: हमारा।
0: तुम्हें जाना है जाओ जिस्म लेकर,
1: अच्छा
0: तुम्हें जाना है
1: जाओ।
0: जाओ जिस्म लेकर, नहीं लौटा रहा मैं दिल तुम्हारा, नहीं लौटा रहा
1: नहीं
0: मैं
1: लौटा
0: दिल
1: रहा मैं
0: तुम्हारा।
1: दिल तुम्हारा।
0: और एक गजल के कुछ शेर और देख लें, कि अजीब लड़की है,
1: अजीब लड़की है।
0: अजीब लड़की है, मुस्कुराकर नहीं में गर्दन हिला रही है, वो घर से आई नहीं है बाहर, पर उसने खिड़की खुली रखी है, तो उदासी घुल मिल गई है मुझसे,
1: क्या
0: कहीं पे भी इसको छोड़ा हूं,
1: बात है।
0: उदासी घुल मिल गई है मुझसे, कहीं पे भी इसको छोड़ आऊं, मैं आके घर की बजाऊं घंटी, तो दर मेरा ये ही खोलती है,
1: क्या कहने, वाह वाह वाह,
0: तो दर मेरा ये ही खोलती है, ये डॉक्टर भी अजीब पागल है, दे रहा है मुझे विटामिन, ये डॉक्टर भी अजीब पागल है, दे रहा है मुझे विटामिन, दवाई कैसे असर करेगी, मुझे मोहब्बत की जब कमी है।
1: हाय
0: और मिठाई छोड़ी
1: हाय।
0: खिलौने छोड़े, लिया है हामिद ने एक चिमटा,
1: एक चिमटा
0: मिठाई छोड़ी खिलौने छोड़े, लिया है हामिद ने
1: हामिद
0: एक
1: ने एक चिमटा।
0: चिमटा, कि उसकी अम्मा जला के उंगली तवे से रोटी उतारती है,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: कि उसकी अम्मा जला के उंगली तवे से रोटी उतार। शेर आकर देखें, कि मैं झोपड़ी का हूं रहने वाला, जगह भला कैसे मैं बनाऊं, मैं झोपड़ी का हूं रहने वाला,
1: जगह
0: जगह
1: भला
0: भला कैसे मैं बनाऊं, पड़ी हुई है वहीं पे शौहरत जहां पे जूती रखी हुई है। बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया।
1: बात, वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
0: एक मतला शेर और देख लें, कि जिक्र ना तेरा हो कैसे हो सकता है, जिक्र ना तेरा हो
1: ये कैसे हो सकता है।
0: कैसे हो सकता है, मेरी गजलों का बस तू ही मकता है, और कॉलेज में इतवार से चिढ़ने वाला इश्क, कॉलेज में इतवार से चिढ़ने वाला इश्क, ऑफिस में इतवार की राहें तकता है। बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला में शायर। प्रतिभागी थे अभिषेक अग्निहोत्री और कौशल सक्सेना। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली का संदेश सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बरेली श्री प्रदीप कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त वाह्य न्यायालयों एवं समस्त विभागों में,
3: जिसमें शमनीय वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, चालान से संबंधित समस्त मामले एवं अन्य मामले आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली से संपर्क करें। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे आबिदा फातिमा और आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम पर प्रोग्राम युववाणी। उम्मीद है आप सभी की शाम बहुत ही शानदार गुजर रही होगी। साथियों, रेडियो का साथ और आपकी पसंद के नगमे, ये तालमेल ही कुछ ऐसा है जो हर दिन को खास बना देता है। आज के सफर में हम और आप साथ मिलकर गुनगुनाएंगे कुछ बेहतरीन धुनें और बांटेंगे कुछ प्यारी सी जानकारी भी। तो बस बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए संगीत के इस खुशनुमा मौसम का और सुनिए ये प्रोग्राम का पहला गीत।

साथियों आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आज है 8 मई और पूरी दुनिया में आज का दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जा रहा है। और ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो युद्ध, आपदा और बीमारी के वक्त बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खास दिन का इतिहास। फ्रेंड्स, आज ही के दिन जीन हेनरी डोनेट का जन्म हुआ था। और जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना की थी। हेनरी डोनेट को उनकी इस महान सेवा के लिए दुनिया का सबसे पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो आइए जानते हैं इस रेड क्रॉस का मकसद क्या है, क्योंकि आप लोगों ने भी जगह जगह रेड क्रॉस बना हुआ देखा होगा। हमारी एम्बुलेंस आती है तो उस पर भी रेड क्रॉस बना होता है, हम ब्लड बैंक जाते हैं वहां पे भी, और हॉस्पिटल्स में भी रेड क्रॉस का एक निशान बना होता है। तो आइए जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। मकसद है कि चाहे जंग का मैदान हो या भूकंप, बाढ़ जैसी मुसीबत, बिना किसी भेदभाव, धर्म, जाति या देश के लोगों की जान बचाई जाए। हम अक्सर रेड क्रॉस को ब्लड बैंक से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में सुरक्षित खून पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करता है। युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो जाते हैं या बंदी बना लिए जाते हैं, रेड क्रॉस उनकी देखभाल और उनके परिवार से संपर्क कराने का काम करता है। फ्रेंड्स, रेड क्रॉस का प्रतीक आज उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।

0: साथियों आप बने हुए हैं अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और जैसा कि आपको मालूम है कि आकाशवाणी के जो 90 वर्ष हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में हमने कुछ बातें की हैं, आइए सुनते हैं।
1: सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: जी। और जैसा कि हमें मालूम है कि आप जो है हमारे आकाशवाणी के बहुत ही पुराने श्रोता हैं, बहुत पुराने लिसनर्स हैं, तो अभी जो है 90 वर्ष होने जा रहे हैं आकाशवाणी को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो मैडम मैं आपके जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, मैं इस लक्ष्य के मौके पर आपके आकाशवाणी के और सारी जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
1: जी आप हमारे आकाशवाणी के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं कुछ बताना चाहेंगे?
2: जी मैम, मैं आपके आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, जैसे किसान वाणी, और जैसे कि मैं एक युवा हूँ तो युववाणी मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोग्राम है जो डेली संध्या के 6 बजे प्रसारित होता है।
1: जी जी जी। तो युववाणी में हमारे जैसे कि बहुत सारे सेगमेंट रहते हैं, वो लकी है, चक्रव्यूह है, नजराना है, शाम है, आपकी पसंद है, जो कि श्रोताओं के पत्रों पर ही आधारित रहता है, तो आपको इनमें से सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगता है?
2: जी मैम, मुझे चक्रव्यूह काफी बेहतर लगता है क्योंकि इसमें आपकी तरफ से जो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से कि बहुत सारी हमारी जो एकेडमिक स्टडी है उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प रहती है। और दूसरा जो है मेरा फेवरेट आपका एक सेगमेंट होता है नजराना है शाम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे उर्दू प्यारे तो
1: जी जी।
2: आप जो है गजल वगैरह सुनवाते हैं तो ये काफी अच्छा रहता है।
1: जी जी। और सौभाग्य से आज नजराना शाम सेगमेंट ही है हमारा, क्योंकि फ्राइडे और हर फ्राइडे को हम नजराना शाम पेश करते हैं, तो उसमें हमारे जो गजल है, गीत है, कव्वाली है, वो उस पर आधारित रहता है। तो आपने जैसे कि बताया कि आपको गजल जो है वो सुनना पसंद है।
2: जी मैम।
1: युववाणी में फ्राइडे को तो आप स्पेशली सुनते होंगे, जब नजराना शाम आता होगा।
2: जी मैम, मैं नजराना शाम हर फ्राइडे को सुनता हूँ।
1: जी अच्छा, ऐसा

0: कभी होता होगा कि आप कॉल लगाते हैं तो वो कॉल लग जाती है या नहीं लगती है, उस बारे में
1: जी जी मैम, मैंने काफी बार ट्राई किया है लेकिन कभी लग जाती है कभी नहीं लगती है।
0: जी ऐसा काफी हमारे लिसनर्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी की कॉल शामिल करते हैं, बस थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है और उन सभी की कॉल लग जाती है ना। तो बस आप कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए और कॉल लगेगी और आपसे बात होगी, जैसा कि आज तो आपसे बात हो ही रही है। तो आप हमारे आकाशवाणी के बारे में, हमारे FM के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बताएंगे? आपको कुछ मालूम है कि इसकी शुरुआत कब से हुई रेडियो की?
1: जी मैम, मैम इसकी शुरुआत जो है ना 23 जुलाई 1927 को हुई थी। सबसे पहला स्टेशन जो था इसका मुंबई स्टेशन था, जिसका नाम था शुरुआत में इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था
0: जी।
1: और मैम इसको जो है ऑल इंडिया रेडियो सर्विस के नाम 8 जून 1936 को दिया गया
0: जी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी जानकारी है और इससे मालूम चलता है कि आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता है।
1: बिल्कुल मैम, क्योंकि आकाशवाणी जो है ना मैम केवल एक संस्था नहीं है बल्कि ये भारत की आवाज रही है, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं को की यात्रा है आकाशवाणी
0: जी। जैसा कि मुझे मालूम है कि बहुत सारी हमारी जो चीजें हैं फोन है या टीवी है या कुछ और ऐसे माध्यम हैं वो अब आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो दौर था उसमें रेडियो ही चल रहा था जो कि आज तक भी चल रहा है। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेनिफिट है और लोगों को सुनना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि रेडियो ने मैम उस दौर में भी हम लोगों को जोड़े रखा था जब ना कोई टीवी थी और ना कोई इंटरनेट था। अहम भूमिका रही है क्योंकि आकाशवाणी जो है गाँव तक सूचना पहुँचाता है, दिशा को लेकर जागरूकता फैलाना इसका सबसे मेन काम रहा है। और जैसे कि मैम कोई आपदा युद्ध वगैरह होते हैं तो मैम उसकी जो विश्वसनीय सूचना हमको आकाशवाणी से मिलती है। मैम मेरा तो सिर्फ युवाओं से और यही इतना कहना है कि मैम आकाशवाणी को सुने, आकाशवाणी से जुड़ना चाहिए सभी लोगों को और खासतौर से युवा पीढ़ी को।
0: जी तो हमने आपसे बात की, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जल्दी जल्दी अगर आपको गजल पसंद है और आज नजर शाम है, आप अपनी पसंद का कोई गीत या कोई गजल या कोई बखबारी अगर आप सुनना चाहें तो हमें बताइए।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल, मैम दीलदारा मूवी की एक गजल है जिसमें है कि आया तेरे दर पर दीवाना, मैं ये कव्वाली सुनना चाहूँगा।
0: चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद की ये कव्वाली और आपने हमसे और हमारे लिसनर्स से आप जुड़े, आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और साथियों अब वक्त है आज के सवाल का, और सवाल हमने आपसे पूछा है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, और इसका सही उत्तर है बिश्केक। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल है धर्मेंद्र छिपा, दिग्दर्शन गौड़, बबलेश पवार, नंद कुमार ठाकुर, गंगा सिंह रावत, राजेश वर्मा, नबी हसन अब्बासी, हीरामणि वर्मा, अनोखी लाल, सोमेंद्र यादव, प्रवीण चौहान, राजेश वर्मा, चक्रवर्ती मानिक और हमारे अन्य सभी साथी।

तो साथियों अब वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली। हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाबा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हरद्वारी लाल वर्मा के साथ।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भाई और बहनों को आपके भैया हरद्वार लाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे भैया और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मौसम का जो उतार चढ़ाव चल रहा है, ऐसे में हमारे भैया अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय बुखार जाड़े का बहुत जोर चल रहा है। हम देख रहे हैं डॉक्टरों के पास लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर जरा सी भी सावधानी हमारे भाई बरतेंगे तो वो अस्वस्थ होने से बच जाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और पैसे की जो फिजूल बर्बादी होती है वो भी नहीं होगी। अपने भाइयों से यही कहेंगे, भाई इस समय गुनगुना पानी पिएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पास पड़ोस में साफ सफाई रखें और नींद पूरी लें। और खेती बाड़ी का काम तो ऐसा है, हमारे भाइयों का कोई ना कोई काम जरूर लागू ही रहता है, चाहे सिवालय की फसल की निराई गुड़ाई की बात करें, चाहे जो खेत गेहूँ की फसल से खाली हुए हैं उनकी ढींचे की बुवाई हमारे कुछ भाई कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली फसल है जो धान की, उसमें अच्छे से उनकी तैयारी हो जाए। और जब ढींचा की खाद खेत में पलटेंगे तो अच्छा उसका जो मुनाफा है धान की फसल से मिले हमारे भाइयों को। और इस समय जो गन्ना की फसल है उसमें निराई गुड़ चल रही है, कहीं सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अभी पिछली बारिश हो गई तो खैर ज़्यादा कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत तो धान की और जो गन्ना की फसल है उसमें ना है। तो ये सस्य कार्य हैं हमारे किसान भाइयों की फसलों में और जो कर रहे हैं हमारे भाई। आज एक खास चर्चा है और क्या क्या लेके आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका, साथ ही दूसरी चर्चा करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस, साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे एक वार्ता श्री संदीप अवस्थी से, किसानों की आय कैसे बढ़े, साथ ही साथ प्यारे से लोकगीतों से आपका कराएंगे मनोरंजन। तो ये तो था आज जानकारी का पिटारा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका, किसान भाइयों जो हमारे देश का विकास है वो गांव के गलियारों से ही होकर जाता है। ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत होती है जहां हमारे ग्रामीण भाइयों को समुचित जो भी योजनाएं सरकार की प्रदेश और देश की चलती हैं उसका लाभ लेते हैं, क्योंकि हमारे भाई जो ग्राम पंचायत होती है अब जगह जगह ग्राम सचिवालय भी खुल गए हैं, किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई योजना का लाभ लेना है तो वहाँ अपने निकटवर्ती जो भी ग्राम सचिवालय है वहाँ जाकर संपर्क कर और उन योजनाओं का लाभ हमारे भाई ले सकते हैं। इसलिए सरकार ने हाईटेक सचिवालय प्रत्येक गांव में विकसित किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे भाई योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ नहीं ले पाते थे, अब समुचित योजना का लाभ हमारे भाई जो ग्राम सचिवालय नियुक्त हैं बने हुए हैं वहां हमारे भाई अपनी फरियाद अपनी बात रख सकते हैं। पहले होता क्या कि इधर उधर हमारे भाइयों को भागना पड़ता था, अब वहाँ एक रोजगार सेवक भी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जो पंचायत मित्र होते हैं वो भी वहीं आपको मिलेंगे, तो सारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे आपको मिल सकेगा। तो गांव के जो विकास है में ग्राम की जो सभा की भूमिका होती है, लोकतंत्र की सबसे छोटी और अहम इकाई 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत जो हमारे ननिहाल होते हैं और जो भाई होते हैं वो अपना एक तो वोटर बनवा सकते हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने पंचायत सचिवालय में ही जा सकते हैं और वहाँ अपना फार्म भर सकते हैं।

गांव के विकास में जो लोकतंत्र की नींव, जैसा कि हमने शुरू में कहा पंचायत होती है, पंचायत में तमाम तरह के और भी विकास के कार्य होते हैं, जैसे सीसी रोड है, नाली है, और जो मनरेगा है, आवास है, योजना के अंतर्गत जो हमारे भाइयों को आवास मिलते हैं, और सामाजिक अंकक्षण के माध्यम से जवाई जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। जैसा कि हमने बताया कि हर 18 वर्ष से अधिक हर जो मतदाता है इसके सदस्य हैं, वो आसानी से अपने सदस्य यानी वोटर बन सकते हैं। गांव में जो खुली बैठक होती है उसमें जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत हमारे भाइयों का वहां चयन होता है और उनको सरकार की योजना का 70% लाभ हमारे भाइयों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, पेंशन के तहत उनको जो चयन किया जाता है, जो पात्र होते हैं उनको एक बैठक के माध्यम से ही पहचान कर उनको मंजूरी दी जाती है और उनको लाभ दिया जाता है। पंचायत के आय व्यय बजट का ब्यौरा भी अब मांगना, जांचना और कार्यों की निगरानी भी करना है। अब ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायतों की भी जवाबदेही है, कितना धन आया, कितना खर्च हुआ, कितना प्रधान जी ने विकास के कार्यों में लगाया। गांव का कोई भी व्यक्ति जन सूचना अधिकारी के तहत आय व्यय का ब्यौरा अब मांग सकता है, प्रधानों की इसमें जवाबदेही होती है। और तो और जो गौशालाएं खोल रही हैं उसके लिए, और जो तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं लघु सिंचाई की, बोरंग निःशुल्क जो हमारे भाइयों को दिए जाते हैं, वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं उनका हमारे भाई लाभ अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से, अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से ले सकते हैं। अगर उनके ग्राम प्रधान जो भी हैं नहीं सुनते हैं तो जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत जो अधिकारी होते हैं वो अगर नहीं सुनते हैं तो एडीओ पंचायत होते हैं प्रत्येक विकास खंड में, उनके पास जाके अपनी बात रख सकते हैं। एडीओ पंचायत यदि ना सुने तो जो खंड विकास अधिकारी प्रत्येक विभाग में होते हैं उनके पास अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो भी ना सुने साथियों, तो अपने जो उपजिलाधिकारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी जिले पर बैठते हैं, उनसे अपनी बात रख सकते हैं। जो पात्रता की श्रेणी में जो भी भाई आते हैं उनको लाभ 100% मिलना ही मिलना है। तो ये तो ही चर्चा। अब जैसे कि दिवस की बात करें, कोई ना कोई दिवस मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक दिवस और है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन हेनरी ड्यूमेंट की जयंती का प्रतीक है, जो 8 मई 1828 को पैदा हुए थे, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक व पहले नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। इनके बनाने के पीछे आपको ये भी बता दें, जो दिवस मनाया जाता है ये दिन युद्ध, आपदा, महामारी और अन्य मानवीय संकटों में निस्वार्थ सेवा देने वालों, लाखों स्वयं सेवकों के मानवीय प्रयासों को सम्मानित करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया। ये दिन करुणा, निष्पक्षता और बिना भेदभाव के लोगों की मदद करने के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता की भावना को विकसित करना होता है, यानी या को मनाने के पीछे जय कारण होता है। तो साथियों, कोई ना कोई दिवस हो उसके मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा हो गई।

0: एक वार्ता है, किसानों की आय कैसे बढ़े, जानकारी दे रहे हैं श्री संदीप अवस्थी जी, तो आइए सुनते हैं।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं, किसानों की आय बढ़ाना भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देश की लगभग आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, फिर भी किसानों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता, छोटे जोतकार और बाजार की समस्याओं के कारण किसानों की आय सीमित रह जाती है। इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत सुधारक शामिल हों। सबसे पहले हम आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। पारंपरिक खेती के तरीकों से उत्पादन सीमित रहता है, जबकि आधुनिक तकनीक जैसे उन्नत बीज, ड्रिप और स्लिपकार सिंचाई, सटीक कृषि और कृषि मशीनरी के उपयोग से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, ड्रिप ड्रेनेशन से पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। इसी तरह सटीक कृषि तकनीकों के माध्यम से किसान मिट्टी की गुणवत्ता, नमी और पोषक तत्वों का सही आकलन कर सकते हैं, जिससे उर्वरकों और कीटनाशकों का सही उपयोग संभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है, फसल विविधीकरण। भारत में अधिकांश किसान गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहते हैं, जिनकी बाजार कीमतें अक्सर स्थित या कम रहती हैं। यदि किसान फल, सब्जी, तिलहन, दालें, मसाले, औषधि, पौधे और फूलों की खेती करें तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे जैविक उत्पादक की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जैविक खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ सकती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। तीसरा, किसानों को बाजार से सीधे जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में अधिकांश किसान अपनी उपज बिचौलिया के माध्यम से बेचते हैं, जिससे उन्हें अधिक मूल्य नहीं मिल पाता। यदि किसानों को सीधे उपभोक्ताओं, खुदराओं, विक्रेताओं और प्रशंसित कंपनियों से जोड़ा जाए तो वे अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन EPFO EPOS का प्रभावी माध्यम है। EPO के माध्यम से छोटे किसान मिलकर बड़ी मात्रा में उत्पादन बेच सकते हैं, इससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है और उन्हें बेहतर कीमत मिलती है। जानते हैं, सरकारी नीतियां और योजनाएं भी किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और कृषि योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि इन योजनाओं का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब उनका सही क्रियान्वयन हो और किसानों तक उनकी पूरी जानकारी पहुंचे। इसके लिए जागरूकता अभियान और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग आवश्यक है। भंडारण और परिवहन की सुविधाओं का किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। कई बार किसान अपनी फसल तुरंत बेचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती। इससे उन्हें कीमत कम मिल पाती है। यदि कोल्ड स्टोर, गोदाम और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो तो किसान अपनी उपज को सुरक्षित रखकर सही समय पर बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग का विकास भी जरूरी है। यदि गांव में ही खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाए तो किसानों को अपनी उपज का मूल्यवर्धन करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, टमाटर से सास बनाना, दूध से पनीर और घी बनाना या फलों से जैम और जूस तैयार करना किसानों को आय बढ़ाने में कई गुना मदद कर सकता है। पशुपालन और अन्य सहायक गतिविधियां भी किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियां किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं। इससे उनकी आय के स्रोत विविध होते हैं और जोखिम कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वर्ष फसल खराब हो जाती है तो पशुपालन से होने वाली आय किसान को आर्थिक संकट से बचा सकती है। जल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में कई क्षेत्रों में जल संकट एक बड़ी समस्या है, जिससे खेती प्रभावित होती है। यदि वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण तकनीकियों का उपयोग

0: जाए तो पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इससे किसानों की साल भर खेती करने का अवसर मिलता है और आय बढ़ेगी। शिक्षा और प्रशिक्षण का भी विशेष महत्वपूर्ण है। किसानों को नई तकनीकियों, बाजार की मांग, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के बारे में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल शिक्षा और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल तकनीकियां का उपयोग आज के समय में किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म और डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किसान बाजार की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उपज को सीधे बेच सकते हैं। इसमें बिचौलिया की भूमिका कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। जलवायु परिवर्तन की किसानों की आय को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक है। चलते समय के कारण सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाना आवश्यक है। इसमें ऐसी फसलों का चयन करना शामिल है जो कम पानी में उग सके और मौसम के उतार चढ़ाव को सहन कर सके। अंत में किसानों के लिए वित्तीय समावेशन भी जरूरी है। बैंकिंग सेवाओं, बीमा और ऋण सुविधाओं का आसान किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और निवेश बढ़ा सकते हैं। इससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में सुधार होगा। निष्कर्ष, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बाजार तक पहुँच, मूल्यवर्धन जोखिम प्रबंधन और सरकारी सहयोग भी उतना ही जरूरी है। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और किसान मिलकर इन उपायों को लागू करें तो किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। इससे न केवल किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि देश की समग्र आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी।
1: अभी आप सुन रहे हैं ये वार्ता और ये वार्ता सुनकर हमारे भाई जरूर लाभान्वित होंगे किसानों की आय कैसी बढ़े। वार्ताकारे संदीप अवस्थी जी, वास्तव में बात सही है किसान भाइयों कि अगर हम खेती बाड़ी में पुरानी पद्धति से खेती ना करके नई टेक्नोलॉजी से अगर खेती करते हैं तो जो उम्मीद हम फसल से करते हैं वो उम्मीद के हिसाब से हमारी उपज मिलेगी। बहुत सारी चर्चा हो गई, बहुत सारी जानकारी हो गई। अब हम आपको करवाने जा रहे हैं ओम प्रकाश भैया की आवाज़ में ये बारे बालम की बारामासी से मनोरंजन। इसके लिए पत्र लिखकर भेजा है जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया, मनोज कुमार कटेरिया, सतेंद्र कुमार कटेरिया, गुड्डू विशाल संगम, वैभव आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता, अंतमा और इनके तमाम साथी। अलीगंज रोड ग्राम मौलिया से हसरत खां, हजमत खां, अजमत खां, डालमिया, रईस वानो, आप हैं। कस्बा मीरगंज बरेली से बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हैं हमारे कल भाई मिस्त्री मोहम्मद, नईम मोहम्मद, फहीम मोहम्मद, नसीम मोहम्मद, दानिश, बाबर अजीम, अनाविया, फातिमा, वाहिद हुसैन और इन्हीं के साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, इस्पाल दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, राजीवपुरी गोस्वामी और समस्त इनके साथी। बहली से हैं अंजुमबाई, खालदा बेगम, कैक्सा, दानिश, आदिल, सफक और इनके तमाम साथी। ग्राम नेतोई आंवला बरेली से आचू बाबू लोधी, फूलन देवी लोधी, सूरज, मुकेश लोधी, हिमा लोधी, संतोष देवी लोधी और इनके तमाम साथी। ग्राम सरोदी अंगदपुर टावर के पास से जाहिद सैफी, साहिद सैफी, समीर, सोहेल, साहिल और इनके साथ में श्याम पाल, कमल, अमित, ज्ञानदेव वर्मा, जमन लाल वर्मा, बाबा जी नलवाले। आप हैं मोहल्ला आज़ाद नगर वार्ड नंबर 6 कस्बा साई से वोरा सकलैनी, अक्रम सकलैनी। ग्राम रंपरा किसानान मजरा सिमरिया, तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा। अलकनंद मंदिर के सामने से गंगवार वैग लाइन बरेली से बेचीलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र देव, इला देवी गंगवार, संजय अग्रवाल।

0: अश्विनी कुमार मौर्य, वर्षा देवी, सुनील यादव, राज कश्यप और इनके तमाम साथी, मोहल्ला राजेंद्र नगर मीरगंज बरेली से राजेश मिश्रा, रामेश्वर दयाल मिश्रा, शारदा मयंक मिश्रा, सुशांत मिश्रा, ओम प्रकाश सागर, राजीव सागर, संजीव सागर, राहुल सागर, पंचम पाल, पान कुमारी और इनके तमाम साथी। तो आप सभी लोगों ने सुनना चाहा है ओम प्रकाश भैया की आवाज में ये बारे बालम की बारामासी।
1: के जेठ शुक्ल सोमवार दशहरा।

बाहे मेरे नैनन से पानी, सात बरस के देख बलम मैं मन में घबरानी, बरस सत्रह की रे मैं आली, दुख किसे सुना मैं।

सावन महीना लगो हिंडोला झूला सब कोरी आओ गाना राग मल्हार धार कै रेशम की डोरी खुशी सब घर घर में सखियां बांधे अपने हाथ।

पुरखन का पानी ब्राह्मण रहे जिमाए देता है दौलत मन मानी सखी आए गयो राम लीला मेला देखन जाऊ संग में लई के सुशीला कोई गौ छोटो मेरो बलमा।

देव तुम कहना राखो मन में धीर मुसीबत दूर होए बहना। किसो दिन हुई जाएंगे स्याने तब इच्छा पूरण होए काम सब करें।

अगले गीत की फरमाइश लेकर भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा, कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति और इनके तमाम साथी, अशरफ खान।

गीत की फरमाइश लेकर भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा, कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति और इनके तमाम साथी, अशरफ खां छावनी पानी की टंकी के पास से राम प्रकाश शर्मा, वंदना मनोरमा, अजय शर्मा, वंश का राम प्रसाद और इनके तमाम साथी, जिला पीलीभीत मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से विमल वर्मा, विनय वर्मा, प्राची वर्मा और समस्त इनके साथी आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये

किसान साथियों, अब समय ना है कि आपसे और बातचीत करें और आपका मनोरंजन कराएं, क्योंकि दीवार में लगी घड़ी बार बार इशारा कर रही है कि हरदारी भैया आपका समय पूरा हो चला है। तो आज का कार्यक्रम ना जाने आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। इसके लिए पता नोट करें, ग्राम जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली PIN 243001। अब यहीं पर आपके भैया हरदारी लाल वर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: इंसानों में जो रोग ट्रांसफर हो जाते हैं उन पे, कौन कौन से रोग हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, और कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या इलाज हो सकता है, ये पूरी जानकारी हम लेंगे अपने विशेषज्ञ से। और आज हमने स्टूडियो में इसके लिए आमंत्रित किया है IVRI बरेली में पशुजन स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हिमानी धांजे जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम।
1: धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे कि जो पशुओं से इंसानों में रोग होते हैं, आमतौर पर सबसे ज्यादा कौन सा रोग फैलता है?
1: पशुओं से इंसानों में कई रोग होते हैं, जैसे मनुष्यों
0: अच्छा,
1: के कम से कम 60% सांक्रामक रोग ऐसे हैं
0: हाँ,
1: जिनका कि संचरण जो है वो मनुष्यों में पशुओं द्वारा
0: पशुओं
1: होता
0: से होता
1: है।
0: है।
1: लेकिन जो मतलब सबसे ज्यादा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो ज्यादा रोग यहाँ देखने को मिलते हैं उनमें से एक तो रेबीज है।
0: रेबीज
1: सबने
0: है,
1: वो श्रोताओं ने भी सुना होगा कि अखबार
0: हाँ
1: में आए दिन आता है कि कुत्ते के काटने से किसी की मृत्यु हो गई है।
0: जी जी
1: हाँ जी, रेबीज है। फिर एक ब्रुसेलोसिस है जो कि जानवरों में, गायों में, भैंसों में गर्भपात करता है। इसके अलावा दिमागी बुखार है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जो पहले पूर्वीय क्षेत्र में था अब पश्चिमी क्षेत्र में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। और टीबी है, क्षय रोग जो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: जी, तो
0: हाँ। अब इसमें, अब जैसे कि हम लोगों का प्रोग्राम है कृषि पाठशाला, तो कृषि से जुड़े जो भी लोग हैं, किसान बहन भाई हैं,
1: हाँ जी,
0: वो गाय भैंस बकरी इस तरह के जो जानवर पालते हैं, उनसे कौन कौन से रोग हम इंसानों को हो सकते हैं,
1: हाँ
0: जितने
1: जी,
0: सावधान रहने की जरूरत
1: हाँ जी।
0: है?
1: तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी ब्रुसेलोसिस के बारे में।
0: जी जी जी
1: हाँ जी, ये है एक ये ऐसा जीवाणु है जो
0: हाँ
1: कि गायों और भैंसों में 6 से 9 महीने के बीच में गर्भपात करता है।
0: अच्छा।
1: तो उनमें तो ये गर्भपात करता ही है, तो किसान को नुकसान होता ही है अगर गाय या भैंस में गर्भपात हो जाए। इसके अलावा ये किसानों में, मतलब जो उनके साथ जैसे संपर्क में रहते हैं, उनमें भी ये जीवाणु आ सकता है। और जब ये आता है तो ये मनुष्यों में बुखार करता है, जैसे आज बुखार आएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर आएगा, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, थकान रहने लगती है। और इससे अगर बचने की बात करें तो किसान भाई बहुत, अभी तो अभी भी हमने देखा है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कच्चा दूध का सेवन कर लेते हैं। तो
0: हाँ
1: ये जो जीवाणु है ये गाय के दूध में भी निकलता है। तो अगर आप कच्चे दूध का सेवन करेंगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगी कि कच्चे दूध का सेवन ना करें।
0: ना करें।
1: इसके अलावा जैसे कभी गर्भपात हो जाता है, हम पशु चिकित्सक को नहीं बुला पाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: जैसे मृत बच्चा है उसको हमने हाथ लगा दिया, दस्ताने नहीं पहने, तो अगर आप जैसे किसान भाई हैं, सब काम करते हैं, चमड़ी में थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेक होता ही है सबके, तो उससे ये जीवाणु चमड़ी के अंदर चला जाता है, मनुष्यों में उसके अंदर चला जाता है और फिर बीमारी करता है। तो ये सबसे बड़ी एक बीमारी है जो कि किसान भाइयों को होती है अक्सर, और उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
0: जी बिल्कुल। और भी कई सारे, जैसे कि गर्मी का मौसम है
1: हाँ जी,
0: और बरसात का मौसम अब
1: हाँ
0: आने
1: जी,
0: वाला
1: हाँ
0: है,
1: जी, हाँ जी,
0: तो ऐसे में तो बीमारियां बहुत सारी हो जाती
1: हाँ
0: हैं,
1: जी, हाँ जी।
0: तो खास तौर पे क्या ध्यान रखना होगा?
1: एक उससे पहले कि मैं जो बरसात के मौसम की बीमारियों की
0: जी
1: बात करूं, एक बात किसान भाइयों को बोलना चाहूंगी कि जो ब्रुसेला बीमारी है इससे बहुत ज्यादा जो है किसान को हानि पहुंचती है, आर्थिक हानि भी पहुंचती है। तो जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने एक योजना चलाई है जिसके अंतर्गत जो है वो बछड़ियों का, जो 4 से 8 महीने की बछड़ियां होती हैं, उनका मुफ्त में टीकाकरण होता है।
0: अच्छा है, तो
1: तो वो
0: बहुत अच्छा है।
1: टीकाकरण जरूर करवाएं,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: बहुत बार देखा गया है कि जब पशु चिकित्सक जाते हैं टीकाकरण करें तो किसान भाई मना कर देते हैं, पर वो मना ना करें, टीकाकरण कराएं। इससे उनका पशु भी स्वस्थ रहेगा, उनको आर्थिक हानि भी नहीं होगी और वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें बहुत सारे किसान बहन भाइयों को जानकारी नहीं होगी,
1: हाँ जी,
0: जानकारी के अभाव में बेचारे बीमारी फैल जाती है
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: मुश्किलों का सामना करना पड़ता
1: हाँ
0: है। तो
1: जी,
0: हम अपने श्रोताओं को एक बार जागरूक कर दें फिर से कि टीकाकरण तो जरूर
1: जरूर
0: करवाएं। तो
1: करवाएं, हाँ
0: इस
1: जी,
0: समय और भी कौन कौन से टीके हैं जो लगवाने चाहिए पशुओं को और खुद भी किसान
1: हाँ जी।
0: भाइयों बहनों को, जिससे बच के रह सकें वो
1: जैसे
0: इन
1: अब
0: रोगों
1: ये
0: से?
1: हमने अभी इसे ब्रुसेला की बात
0: जी
1: करी,
0: जी
1: ये तो
0: जी
1: इसका तो टीका जो है वो जानवरों में लगता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: अपने
0: जी
1: गायों में, भैंसों में, जो भी 4 से 8 महीने के उसमें लगवाएं। उसके अलावा जो दूसरा एक रोग फैलता है आजकल, जो पहले पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा था, जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं,
0: हाँ
1: जापानी मस्तिष्क ज्वर,
0: जी जी जी
1: वो मच्छर के काटने से, जैसे आपने बात की कि गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम आएगा तो मच्छर की जनसंख्या बढ़ती है
0: बहुत ज्यादा।
1: और
0: हाँ
1: फिर डेंगू हो जाता है, ये
0: जी
1: दिमागी बुखार हो जाता है। जो दिमागी बुखार है इससे भी बचने के लिए जो जिला अस्पताल है वहां पर बच्चों का टीकाकरण होता है ना। वैसे तो वो 9 महीने से 1 साल की उम्र के लिए वो मुफ्त में होता है, लेकिन अगर 15 साल तक के बच्चे को भी वो लगाते हैं टीका मुफ्त में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम जगत हरद्वारी लाल वर्मा के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि पाठशाला। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग, जानकारी एवं बचाव। वार्ताकार होंगी डॉक्टर हिमानी धनंजय और इनसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे पशुओं से

0: तो जिला अस्पताल में जाके अपने बच्चों को जरूर टीकाकरण कराएं, क्योंकि ये भी एक गंभीर बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपके बच्चे में लक्षण आ गए तो फिर मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए इस बीमारी से भी बचना बहुत जरूरी है।
1: तो ये जानवरों से हो सकता है?
0: हाँ जी, ये जानवरों से,
1: मतलब मच्छरों से, मच्छर वहां से ट्रांसफर कर देंगे।
0: ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जो कि जैसे जो विषाणु है वो बगले, जो जैसे धान के खेतों में हमने सफेद रंग के बगले देखे, उनमें पनपता है वो विषाणु। फिर मच्छर उस विषाणु को उन बगलों से लेते हैं और सुअर में डाल देते हैं, फिर सुअर में विषाणु बहुत बड़ी संख्या में पनपता है, फिर सुअरों से दोबारा मच्छर सुअरों को काटता है, वो विषाणु लेता है और हमारे बच्चों को काटता है, फिर बच्चों में दिमागी बुखार होता है, दिमाग प्रभावित होता है और फिर सही समय पे इलाज ना होने से मृत्यु हो जाती है बच्चों
1: की। तो खासतौर पे ये बच्चों को निशान,
0: बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है।
1: जी, तो, जी, और इसमें भी खासतौर पे जो शुकर का पालन करते हैं,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: वहाँ ज्यादा खतरा है।
0: बिल्कुल, जो शुकर पालक जितने भी हैं, मैं उनको ये गुजारिश करूंगी कि वो जैसे अपना बाड़ा, जहाँ भी वो शुकर पालन करें, वहाँ साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखेंगे तो मच्छरों की जनसंख्या कम होगी, तो उनके बच्चे भी जो है वो स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, साफ सफाई मतलब कि पानी न जमा होने दें,
0: पानी न जमा
1: और
0: होने
1: कुछ छिड़काव करते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे मल मूत्र जो है उसको साफ ढंग से साफ करते रहें ताकि। हाँ जी,
1: अच्छा, अब ये भी एक समस्या है, मान लीजिए जो भी पशु हैं, गाय भैंस बकरी या शुकर भी या मुर्गियां भी हैं, तो ये कैसे पता चले कि जो पशु हैं संक्रमित हो गए हैं, शुरुआत कैसे?
0: हाँ जी, तो संक्रमित जैसे अब गर्भपात हुआ तो वो तो पता ही है कि गर्भपात जो है, जैसे वो हमने उदाहरण दिया ब्रुसेला का, है ना, अगर पशुओं का वजन कम हो रहा है तो जैसे टीबी का, तो लेकिन हम उसके संक्रमित, मैं तो ये बोलूंगी किसान भाइयों की कि संक्रमित होने का इंतजार ही मत करिए। आप ऐसा वो रखिए कि आपके जो पशु हैं वो संक्रमित हो ही ना, टीका जरूर लगवाएं और अपने पशु बाड़े के आसपास सफाई रखें ताकि मच्छर ना हो। उसके अलावा किल्लियों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो जैसे अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो किल्ली से पशु का स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है, लेकिन उसमें कई वो लोग ऐसा किल्ली में ऐसे जीवाणु विषाणु होते हैं जो कि अगर हमें काटते हैं, मानव को काटते हैं, तो हमें भी वो बुखार कर सकते हैं। तो अपने जानवरों को किल्ली मुक्त रखें, साफ सफाई रखें, तो ये जरूरी है बहुत।
1: अब ये है कि मान लीजिए किसी को, खैर कई सारे तो आपने बताए हैं जो जिनका कोई इलाज ही नहीं है,
0: जैसे
1: जापानी बुखार है।
0: हाँ जी,
1: और अब लेकिन आखिर में मान लीजिए किसी को कुछ हो ही जाता है।
0: हाँ जी,
1: तो कोई तरीका है, कोई इलाज है किसी भी, जैसे जो बैक्टीरिया जनित है कच्चे दूध से हो रहा है, उसमें कुछ इलाज है, संभावना है?
0: हाँ जी, इलाज तो है, जैसे अब अगर आपको टीबी हो जाता है,
1: टीबी
0: का तो इलाज है ही।
1: हाँ,
0: तो उसमें भी मैं ये बताना चाहूंगी किसानों को कि जैसे 6 महीने का अगर आपको डॉक्टर ने दवाई बोली है तो आपको 6 महीने की दवाई लेनी ही लेनी है, क्योंकि दवाइयां थोड़ी भारी होती है। लोग क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना खा के छोड़ देते हैं कि उल्टी आ रही है, मन खराब हो रहा है, तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और फिर दोबारा जब उनको वो जीवाणु या विषाणु प्रभावित करता है तो उसका फिर कोई मतलब इलाज, क्योंकि वो दवा जो है वो काम करना बंद कर देती है।
1: जी, जी।
0: वैसे दिमागी बुखार है, उसमें जो सबसे पहला लक्षण आपके बच्चों को आएगा वो तीव्र बुखार आएगा, तो उसमें बहुत बार लोग ऐसे, तो उसमें आपको तुरंत आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, वरना बहुत बार लोग ऐसे करते कि नीम हकीम के पास चले गए और फिर वो देसी इलाज कराते रहे तो कोई असर नहीं हुआ, फिर जब तक बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो फिर मृत्यु हो जाती है।
1: और ऐसे में जानवरों का क्या इलाज होगा? इंसानों में मान लीजिए जो फैल गया, बीमारी हो गई, उन जानवरों का क्या करना होगा, उनका इलाज कुछ होगा या
0: उनका भी जैसे जो आम हम आम तौर पे एंटीबायोटिक देते हैं वो करते हैं, तो वो इलाज चलता
1: इलाज
0: ही
1: से संभावना होती है,
0: संभावना होती है बचने की। बिल्कुल,
1: अच्छा अच्छा,
0: बिल्कुल।
1: तो पहला ये है कि टीका लगवाएं इन बीमारियों से बचने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा सावधानी ये है कि साफ सफाई रखें।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
1: और अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो ऐसे पशुओं से दूरी बना के रखें, उनको जो हर्ड है जो उससे अलग ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे पशुओं में भी फैलने हो सकता है। और अगर फिर अच्छा, हम इंसान भी, जो किसान बहन भाई हैं वो भी टीका लगवा के रखें, अपने बच्चों को लगवाएं।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: और अगर हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर
0: के पास जाएं।
1: और इस ये जो आपने गाय भैंस बताया, मुर्गियों से भी कुछ?
0: मुर्गियों से भी बीमारियां, कई बीमारियां हैं जो फैलती हैं। किसान भाइयों ने फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा, जिसमें कि एकदम से जब भी बीमारी आती है तो पूरी की पूरी मुर्गियां खत्म हो जाती हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई मतलब वो नहीं बताते हैं आसपास के अस्पताल में, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बाकी मुर्गियों को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी

0: बीमारी, अगर मुर्गी में बीमारी आ रही है और अगर मुर्गियां आपकी मर रही हैं, तो आपको एकदम से जो पशु चिकित्सालय है वहां जाके आपको बताना ही बताना है, क्योंकि वो विषाणु जनित बीमारी होती है और वो विषाणु आपको भी प्रभावित कर सकता है और फिर आप में भी ऐसे आपके फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, आपके बाकी अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे में आपको उनको एकदम से सूचना देनी है, फिर उनकी टीम आती है, पशु चिकित्सालय से एक टीम आएगी जो कि फिर वहां पे पूरी सावधानियां बरतेगी ताकि बीमारी जो है वो मनुष्य है।
1: हाँ, वो लक्षण तुरंत भी नहीं आते, कई बार
0: ये लक्षण नहीं आते, हाँ कई
1: आते
0: सालों बाद आते, कई बार 15-20 साल भी लग जाते हैं आने में। इसलिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम वैक्सीन जनरली हम पहले कर लगाते हैं टीकाकरण, ताकि बीमारी ना हो। इसमें जब हमें काट लिया तब हम 5 टीके लगवाते हैं उस 1 महीने के अंतर्गत में, क्योंकि जब आपको कुत्ता काट रहा है तो आपकी टांग पे काटेगा, हाथ पे काटेगा, तो उसको जो विषाणु है उसको दिमाग तक पहुंचने में समय लगता है, उसी समय में हम ये टीकाकरण करवाते हैं ताकि विषाणु को खत्म कर दे। एक बार विषाणु दिमाग में पहुंच गया तो फिर लक्षण आते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है।
1: जी जी, अब बकरी रह गया मेरे ख्याल से,
0: हाँ जी, हाँ
1: इनसे
0: जी।
1: कोई खास बीमारी तो नहीं फैलती
0: बकरी का? भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो बकरी का दूध है ना, उसकी मतलब वैसे काफी वो मतलब वैसे माना जाता है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बहुत पौष्टिक है,
1: आयरन ज्यादा होता है,
0: हाँ उसमें काफी, लेकिन उसको भी लोग गाँव में क्या करते हैं कि कच्चा दूध पीते हैं उसमें, तो उसमें भी कच्चा दूध नहीं पीना है। कई ऐसे परजीवी भी होते हैं जो कि दूध में निकलते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना, जैसे एक टॉक्सोप्लाज्मा करके है, वो भी जो है वो जो हमारे मतलब मानव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें गर्भपात कर देता है ना, तो वो सब मतलब, तो दूध में हमेशा दूध, चाहे बकरी का दूध ले रहे हैं चाहे गाय का दूध ले रहे हैं, अगर आप उसको उबाल के पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको पौष्टिक आहार मिलेगा, अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो आप बीमारियों को अपने पास बुला। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: और आखिर में अब एक अहम सवाल है,
0: हाँ जी,
1: कि आमतौर पर जो संक्रामक बीमारियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन आजकल हम इंसानों में हार्मोनल चेंजेस बड़े देखने को मिल रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है,
0: हाँ जी,
1: तो ये भी क्या दूध से फैल रहा है कुछ?
0: नहीं नहीं, ये
1: है?
0: तो ये तो एक मिथ है, ऐसा
1: मिथ
0: नहीं
1: है, हाँ ऐसा,
0: जी,
1: कुछ,
0: ऐसा
1: है नहीं।
0: कुछ नहीं है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं।
1: या जो कुछ हम लोग प्रोडक्ट मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं,
0: हाँ
1: उनसे भी कहीं से ये
0: नहीं,
1: कोई खतरा नहीं,
0: नहीं, हाँ जी, वो मिथ है, बल्कि ये कि जो दूध ले रहे हैं आप हमेशा ध्यान रखें कि आजकल जैसे बाजार में बहुत सारा पनीर ऐसा पकड़ा जा रहा है कि वो सही दूध से नहीं बना,
1: नहीं
0: है, सिंथेटिक पनीर है,
1: जी, जी।
0: तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है कि जहां से भी हम दूध ले रहे हैं वो अच्छा दूध है, दूध को हमेशा उबाल के पीना है, कोशिश करें कि पनीर जो अपने घर में ही बनाए ताकि आपको वो पौष्टिक आहार मिले और ऐसे बीमारी।
1: या कई बार ऐसा भी देखने में सुनने में आता है कि ज्यादा दूध हो इसके लिए इंजेक्शन देते हैं हार्मोन का,
0: वही इसीलिए मैंने कहा कि मतलब उसका ऐसे कोई इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिखता, बट लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बोला हार्मोनल चेंजेस, वो कुछ तो वो सब चीजें तो हो सकती हैं। इसलिए जो भी किसान भाइयों को भी बोलूंगी कि आप ये सब ना करें, और जहां से भी अगर आप अपने घर में गाय भैंस नहीं पाल रहे, दूध ले रहे, तो ये ध्यान रखें कि ये सब जो है
1: ना होता हो।
0: गाय भैंसों में भी ये गर्भपात कर देती है, कई बार थनैला भी कर देती है, कर देता है ये जीवाणु, और ये अगर मनुष्यों में जाता है तो ये मनुष्यों में लीवर को प्रभावित करता है, गुर्दों को प्रभावित करता है, और कुछ 1-2 साल पहले मीरगंज वाले क्षेत्र में भी कुछ लोगों इस बीमारी से प्रभावित हुए थे। तो सिर्फ चूहों की जनसंख्या को भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, और जैसे बहुत बार हमने गांवों में देखा है कि जैसे भैंसे जिस तालाब में नहा रही हैं, बच्चे भी उसी में नहा रहे हैं, तो फिर वो ये जो जीवाणु है ये आपके चमड़ी द्वारा अंदर घुस जाता है या आंखों द्वारा अंदर घुस जाता है और फिर बड़ी बीमारी करता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मतलब इस बीमारी
1: साफ सफाई का सबसे पहले तो साफ सफाई सबसे बहुत जरूरी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी,
1: स्वच्छता रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी,
0: बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी
1: जी। तो अब कार्यक्रम के आखिर में वन लाइनर अगर कुछ आप बताना चाहें हमारे किसान बहनों भाइयों को,
0: तो बस यही है कि अपने पशुओं को भी स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें, यही बोलना चाहूंगी
1: जी। बिल्कुल, खुद भी स्वस्थ रहें और उसके लिए अपने पशुओं को स्वस्थ रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर है जागरूक रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है जानकारी, और जानकारी देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं आकाशवाणी में, और आप सभी वैज्ञानिक जो IVRI हैं या इस तरह के जो भी संस्थान हैं वहाँ से हैं, आप लोगों को हम बुलाते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम।

0: कृषि पाठशाला, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना सुनिए। सेजल, पुत्री राजकुमार, निवासी चक महमूद मोहरिया गली, थाना बारादरी, जनपद बरेली, आयु 23 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने गुलाबी रंग का गाउन और पैरों में चप्पल पहनी हुई हैं। ये 18 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली का संदेश सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बरेली श्री प्रदीप कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त बाह्य न्यायालयों एवं समस्त विभागों में,
1: जिसमें शमनीय वाद, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, चालान से संबंधित समस्त मामले एवं अन्य मामले आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय बरेली से संपर्क करें। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। सुमेरी, पुत्र महिपाल, निवासी हरहरपुर, थाना कुवरगांव, जनपद बदायूं, आयु 20 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, शरीर की बनावट औसत है व चेहरा लंबा है। ये 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें थाना अध्यक्ष, थाना शाही, जनपद बरेली। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो चुके हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं प्रादेशिक समाचार से, जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की।

0: सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: एनसीआरबी रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश

0: में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
2: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइट रेन फॉल, छींटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। कार्यक्रम में आज का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
2: मर्दाना कमजोरी,
4: महिलाओं के मूत्र रोगों,
2: गुर्दे की पथरी,
3: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
2: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
3: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
6: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।
6: अच्छा, बताइए
5: अगर आपकी अनुमति हो तो।
6: जी बताइए
5: डॉक्टर साहब, आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही न करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए। क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
6: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा। पहले एक तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
5: जी,
6: किस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
5: जी, जी।
6: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से, किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
5: जी, जी।
6: तो ये जो बीच वाला जो इश्यू है कि जी बनी है
5: जी
6: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
5: जी।
6: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
5: जी
6: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के हो सकता है।
5: अच्छा।
6: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
5: बिल्कुल।
6: इससे छोटी पथरी होगी
5: जी
6: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
5: अच्छा।
6: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
5: जी, जी।
6: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
5: जी,
6: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
5: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
6: जी,
5: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
6: वो हो सकता है,
5: वो संभव।
6: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
5: जी।
6: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान करती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
5: जी।
6: और मैं तो कहूंगा कि 70-80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
5: अच्छा।
6: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
5: जी, यानी समय पर पहचान
6: जी
5: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।

0: अब आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
1: जी
0: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
1: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
0: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
1: 85 mm
0: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में डाल तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
1: जी जी।
0: अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है
1: जी। आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
0: जी
1: या पेशाब में कोई समस्या होगी
0: जी।
1: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो, पथरी फिर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है।
1: वो कैसे डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है, गुर्दे के 3 हिस्से होते हैं
1: जी।
0: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कहीं कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है, पेशाब का जो फ्लो होता है आराम से होता रहता है और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हटके पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
1: जी,
0: तो जैसे होता है ना कि नाली चोट हो जाती है तो पानी आसपास फैल जाता है, अगर कम परेशानी है ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है। लेकिन जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया है कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो जो पथरी का साइज आप बता रहे हैं जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है
0: जी,
1: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
0: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं में और पुरुषों में
1: जी।
0: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
1: जी
0: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी पथरियों में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी और उस समय जो है हम कोई ना तो एक्सरे कर पाते हैं
1: जी,
0: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन करते हैं
1: जी।
0: तो उसमें महिलाओं को जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या टर्मिनेट करवानी पड़ती है
1: जी।
0: तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
1: जी,
0: और इसका इलाज जरूरी है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है
0: जी।
1: तो अगर कोई महिला कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
0: जी,
1: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती है।
0: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक गुर्दे में होती है और एक गॉलब्लैडर में पथरी होती है, और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है। और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो गया तो वो अगले 6-7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है
1: जी, जी।
0: तो ये परेशानी का सबब बन सकता है
1: जी, इसलिए पहले एक जांच हो जाए
0: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो
1: मदद
0: है
1: मिल
0: वो मदद मिल जाती है
1: जी। बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था, तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं, वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
0: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे
1: जी,
0: 15-16-20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
1: बहुत कम होती थी जी,
0: मतलब होती ही नहीं थी। मान लीजिए कि जी यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे, पथरी सोचते ही नहीं थे। अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 साल के तो से 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाग भी बन जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान
1: की वजह से ये पथरियां
0: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे
1: जी,
0: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे, एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं, एक्सरसाइज शारीरिक

0: एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी ध्यान देना है, और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बढ़ने की वजह आपने बताई दी है डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन है तो सर्जरी की बात बताएंगे, लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात ही नहीं करनी है आज। हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे निकाली जा सकती है। आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो पथरी बनने के या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है, जो सॉल्ट होता है, क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
0: वो तो है ही, इसमें जैसे भी मैंने बताया बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है
1: जी।
0: बाकी और चीजें, किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
1: अच्छा,
0: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं
1: जी।
0: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जल्दी से पता चले, कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है
1: जी जी,
0: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
1: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
0: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ये होता है कि जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना, जैसे कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है,
1: अच्छा,
0: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन दी तो उससे निकल सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं
0: जी,
1: न कभी दर्द होता है और न हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं, जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है, तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है गुर्दे में पथरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
0: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
1: हैं, दोनों गुर्दों में,
0: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं
1: जी।
0: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, हमने कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं और तुम्हें दोनों गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
1: गुर्दे फेल हो जाते हैं
0: जी, बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही नहीं थी और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
1: अच्छा, फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को, एक किस स्थिति को कहेंगे, क्या होता है शरीर में ऐसा?
0: उसमें जब ऐसे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है दो चीजें होती हैं, वो जब बढ़ जाती हैं,
1: अच्छा,
0: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
1: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो सकता है?
0: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए
1: जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है
0: जी,
1: इसके पीछे क्या वजह है, स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा पथरी यही क्यों होती है लोगों को?
0: देखिये, पथरी का जो आराम कारण जो है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है कंटेंट जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व्ड है उससे होती है। दूसरी चीज, 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है, तो उसमें क्या है कि जी पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वो शाम के 4-5 बजे पिया
1: जी।
0: उससे जो है वो जैसे किसी ग्लास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
1: जी,
0: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है। उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
1: जी,
0: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है
1: जी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, चूंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा आपने बताया है, क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
0: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार
1: जी,
0: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया उसका, तो इलाज हो सकता है उसका
1: जी। क्या बता

0: बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी?
1: देखिए, उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस चीज से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खान पान सही रखें, पानी ज्यादा पिए और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है
0: जी। और उसके अलावा
1: रेगुलर अपना चेकअप
0: करवाएं। बिल्कुल, एक जांच जो आपने बताई है अल्ट्रासाउंड की वो बहुत मददगार हो सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की डॉक्टर, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है
1: जी।
0: जो यूरिक एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है उसके बाद लोग जांच कराते हैं, तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड का?
1: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
0: जी,
1: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से
0: जी,
1: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन एक बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
0: अच्छा,
1: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन हैं वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं
0: जी।
1: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए, उसमें इन सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती, पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग के जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को हो रही है पथरी
0: जी जी,
1: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको पथरी हुई है
1: जी,
0: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना ये, हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
1: पहले साल में 60-70% हो जाएगी
0: फिर पहले साल में।
1: हाँ, पहले साल।
0: अच्छा,
1: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे ज्यादा फिर से बन जाती है
0: जी। एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं जी। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
0: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से
0: जी। रमेश जी बताइए, क्या समस्या है आपकी?
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में
0: जी। अच्छा,
2: तो हाँ, पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है क्या? पित्ते की पथरी,
1: पित्त की थैली की पथरी जो है ना, वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं, इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, जो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
1: हाँ, गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा, तो फिर दोबारा ना होगी?
1: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60-70% है।
2: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
1: नहीं, वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, पथरी है उसको अलग अलग से।
1: हाँ, 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम तकनीक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो रहा नहीं, आराम से हो जाएगा?
1: हाँ, 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ, तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को, वो डर ना हो।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ
0: जी,
1: उसमें कई बार उस पथरी में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है,
2: घर भी कर दिया जाता मरीज।
1: हाँ जी, हाँ,
2: अच्छी बात है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया डॉक्टर साहब। चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है, लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की आपने, इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका

0: इलाज आप कर रहे हैं तो पित्त की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे?
1: नहीं, दोनों की टेक्निक अलग है।
0: अलग
1: जैसे अच्छा। मैंने बताया गुर्दे की पथरी जो है वह दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
0: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
1: बिल्कुल, उसमें फिर जो एक बार पित्त की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
0: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता है जब समस्या नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं,
1: जी
0: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों
1: जी? जो ऐसे लोगों का जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है
0: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते हैं?
1: जी,
0: मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं
1: जी,
0: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी
1: जी,
0: क्या ये संभव है?
1: देखिए, छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती है आपने कुछ भी नहीं किया तो
0: जी,
1: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी
0: जी।
1: इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो
0: जी।
1: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको देख के और साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए
0: जी।
1: तो वही दवाइयां और वही चीजें जो है वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए जिसका कि शोध हो चुका हो।
0: बिल्कुल।
1: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है
0: जी, जी।
1: बाकी प्रयास करने से आप अपनी ही शरीर से खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए
1: जी।
0: कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आप कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
1: देखिए, सही तरीका ये है कि साफ पानी हो, निथार के जो है उबाल के या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए, या आजकल जो आरओ वाटर है वो पीना, वो हो जिसमें कि सॉल्यूट्स अंदर जो है वो टीडीएस जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा, ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे एक गिलास पानी पी लीजिए। तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पे 15 गिलास पानी पी लीजिए, वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया, दिन में पानी नहीं पिया, तो वो काम इतना नहीं करता है।
0: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये गलत प्रैक्टिस।
1: तो उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है
0: जी। सही तरीका यही है कि हर घंटे पे 1 गिलास पानी औसत रूप से पीते रहे
1: जी। जी,
0: और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज वो भी बिना ऑपरेशन के
1: जी,
0: क्या खास बात बताएं?
1: देखिए, इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें
0: जी,
1: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: इसमें चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने, चाहे वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के
0: जनजागरूकता के लिए ये बात कही गई है।
1: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है
0: जी। जी, कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर किसी को पथरी हो जाती है
1: जी।
0: पथरी अपनी जगह है, गुर्दे में नुकसान करती है, उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान ले।
1: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो, तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं, तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है,
0: कैंसर तक हो जाता
1: जी।
0: है
1: जी। तो इसलिए ये जो है ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या की
0: वजह बनती है। डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है। हम चूंकि बात भले ही बिना

0: ऑपरेशन की कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा बिना किसी टाके के बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
1: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है
0: जी,
1: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
0: 3 से 4 घंटे में डॉक्टर
1: जी,
0: ये कैसे संभव है?
1: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं
0: जी,
1: पथरी पे फोकस रखते हैं और सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से सब कुछ होता है
0: जी,
1: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण

0: बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सके।
1: बिल्कुल
0: जी, का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
3: मर्दाना कमजोरी,
5: महिलाओं के मूत्र रोगों,
3: गुर्दे की पथरी,
4: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
3: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
4: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। कार्यक्रम में आज का विषय था गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे थे मुकेश पांडे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
7: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
6: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से।

मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ।

हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है 8 मई और 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन मानवता, सेवा, करुणा और निस्वार्थ सहायता की भावना को समर्पित है। इस अवसर पर उन लाखों स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है जो संकट, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी जैसी परिस्थितियों में मानव जीवन बचाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस का आयोजन महान समाजसेवी और रेडक्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। उन्होंने मानव सेवा को जीवन का सर्वोच्च धर्म माना। युद्ध में घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर उनके मन में एक ऐसे संगठन की स्थापना का विचार आया जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की सहायता करे। इसी सोच से रेडक्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई। रेडक्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, पीड़ितों की सहायता करना तथा स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह संस्था जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य करती है। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी और युद्ध जैसी परिस्थितियों में रेडक्रॉस के स्वयंसेवक सबसे पहले सहायता के लिए आगे आते हैं। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, तब रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। कोविड महामारी के दौरान भी दवाइयों, रक्तदान, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की सहायता की। रक्तदान शिविर के आयोजन में भी इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमें भी अपने समाज में जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान, सेवा और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन सकती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि मानवता, प्रेम और सेवा का महापर्व है। ये दिन हमें दूसरों के दुख को समझने और मानव कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है।

0: आइए अब हिंदी कार्यक्रम के संक में एक काव्य पाठ आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री धर्मराज उपाध्याय।
1: सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुख क्या होता है कि प्रेमियों के लिए होती हिज्र बड़ी दुखदाई, मुझको तो बेवफा की दीद दुख देती है। और साफ साफ मना करे लगे कंजूस भला, दानियों से दान की उम्मीद दुख देती है। और फिर अगला सुनाता और दुख क्या होता है कि एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है। एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है, तीसरे ने कहा जिसे पाले रहा उम्र भर, आस्तीन का वो मुझे सांप दुख देता है। मेरी अगली रचना सुनिएगा। श्री कृष्ण जी ने चाहा कि हम दोबारा अवतार लें, हमने मना किया, हमने कहा प्रभु वो द्वापर युग था जो चल गया, अब ये कलयुग है, इसमें दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत आएगी, तब मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, कदम की ठंडी छाँव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। प्यारे दोस्तों, हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे। हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे, भाईचारे की होली खेली जाए हर बार, प्रार्थना है देश में तरक्की का गुलाल रहे। कि होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, बाबूजी भी चल दिए। होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, जहां चला वहां चले, जहां रुका वहां रुके, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी। और बाज सी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए, जीतने को जैसे कोई जंग आए बाबूजी। और ससुर हमारे बस रोकते ही रह गए, दौड़कर सासू जी को रंग आए बाबूजी, दौड़कर सास जी को रंग आए बाबूजी। और ये हवा जब फगुनहट गाए तो होली का मजा आए, हवा जब फगुनहट गाए तो होली का मजा आए, नशा हर अंग में छाए तो होली का मजा आए, विरह की वेदना में एक बिरहिन कह रही थी कल, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए। कि सिर पर गंगा, माथे चंद्रमा और गले

0: में नाग, सिर पर गंगा, माथ चंद्रमा और गले में नाग, डम डम डमरू बजा के भोले खेल रहे हैं फाग जोगीरा सारा रा रा रा।
1: ये काव्य पाठ अभी आप सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे श्री धर्मराज उपाध्याय। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आपको याद दिला दें रविवार 10 मई को हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में विषय है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जिसके लिए आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान। समय होगा दिन में 12 बजे से 1 बजे तक, जिसे आप सुनेंगे एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
2: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अरशद हुसैन चिश्ती के गाए नात व कव्वाली।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अरशद हुसैन चिश्ती की गाय नात व कव्वाली। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट।

अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। इन्हीं की आवाज में हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है क्या कहना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको

0: समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अग्रेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान

देते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश

0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदाय को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। पीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी और स्क्रूटनी कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सोमनाथ

0: मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती कहे पुकार के। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचनाकार हैं मचेरू सुल्तानपुरी।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अब सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म बहू बेगम में। साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है रोशन ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपंत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20

0: मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब का बात बोलू साहब।

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: मैं आऊं विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए।
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, चरण जी झड़प हो गई। किससे हुई? बम किससे हुई?
4: नहीं बताती।
1: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी दुनिया में नहीं होती।
1: बस बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब,
1: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब है जिससे तू?
5: नहीं
4: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता। सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे।

0: मत कसना, और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ज्ञान रहने जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: ആകാശവാണി എട്ട് നയൻറ്റി.
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का चित्रपट से. कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है महबूब की मेहंदी फिल्म का, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने.
2: जो चिलमन है

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना अभिमान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है आंधी।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना इज्जत फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीतल प्रसाद मिश्रा का तबला वादन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं झक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में

0: संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा।